ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह के 18वीं तिथि, तदनुसार 10 अक्टूबर सन 2026। सुबह की 8:55 होने को है। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस और उसके बाद में होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 9:20 पर। आज है शनिवार और आज आप सुनेंगे साजों पर धुन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:40 पर सुबह 10 बजे, गाने पुराने जमाने के, और उसके बाद में 10:30 पर गाने नए तराने नए।

आज सुबह 11 बजे आप सुनेंगे जयपुर से कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल के साथ जैविक खेती के नए आयाम विषय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम। शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने पनिहारी। 5:30 पर आप सुन सकेंगे। 6:20 पर होगा माटी के स्वर कार्यक्रम।

0: जयपुर केंद्र से शाम 7 बजे आप सुनेंगे किसान वाणी और 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 8 बजे आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। ये थे कुछ खास कार्यक्रम आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले। सुबह के 9 बजे हैं, ये सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत आयोजित एयर शो में शामिल होंगे। प्रदेश में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज आपसी राजीनामे से मामलों का निस्तारण होगा और पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। प्रदेश भर में आज पंचायत समिति स्तर पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशालाएं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। वे कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के आसपास रहने वाले परिवारों को विशेष अवसरों पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, खिलौने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल ही नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा।
2: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री भारतीय वायु सेना के जवानों और विभिन्न देशों से आए वायु सेना के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तरंग शक्ति अभ्यास 26 सितंबर से शुरू हुआ था जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य सैनिकों के बीच आपसी सहयोग, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की क्षमता और एक दूसरे की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझना है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास में F-35 लाइटनिंग 2, राफेल, F-16, A-400M और KC-30A सहित कई उन्नत विमान भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से ही नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। उन्होंने कहा कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है।
3: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रॉक्सिमेटली 60% अधिक है।
1: राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य माह का आज समापन होगा। 10 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में रैलियों तथा जागरूकता सत्रों के जरिए लोगों को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग किया गया। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि अभियान का समापन डिजिटल शपथ के साथ होगा। उन्होंने अत्यधिक तनाव और अवसाद की स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श लेने की जरूरत पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालतें आज लगाई जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों, राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता वाद निवारण आयोगों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 8,038 से अधिक प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं। जोधपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल लोक अदालत के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं जयपुर सहित प्रदेश के अन्य न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर दर्ज जन शिकायतों का जल्द और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासन सचिवालय में हेल्पलाइन का निरीक्षण कर परिवादियों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नेक्स्ट जनरेशन राजस्थान संपर्क और AI आधारित संपर्क GPT की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों का विश्लेषण कर आमजन को राहत पहुंचाने को कहा। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल दूसरे दिन कुल 42 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें जिला परिषद सदस्यों के लिए 8 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 34 नामांकन पत्र शामिल हैं। जिला परिषद सदस्यों के लिए 15 उम्मीदवारों ने अब तक 16 नामांकन पत्र भरे हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के लिए अब तक 41 नामांकन पत्र भरे गए हैं। दूसरे दिन झालावाड़ की डग पंचायत समिति में सबसे अधिक 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए। प्रत्याशी 13 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज सभी पंचायत समितियों में प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी संभावित प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया और चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी देंगे। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। बीसलपुर परियोजना के कमांड क्षेत्र में प्रेशर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना MCAD के तहत शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भुवन भास्कर ने बताया कि पाइपलाइन प्रणाली से खेतों तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना और किसानों को बेहतर जल प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
4: भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है जिसमें यह कहा गया है कि जो नहरों से सिंचाई होती है, जो पानी फ्लो से दिया जाता है, उसको फव्वारा पद्धति पर, प्रेशर इरिगेशन पर कन्वर्ट किया जाए। इसका एक प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है जिसमें 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में हम जो प्रवाह प्रणाली थी, जो ग्रेविटी फ्लो था, उस नहरी तंत्र को हम कन्वर्ट करेंगे फव्वारा पद्धति में। इससे पानी की बचत होगी और किसान ये देख सकेगा कि किस प्रकार ये उन्नत किस्म की जो सिंचाई प्रणाली है, इससे अच्छी फसल पैदावार होती है और पानी नष्ट नहीं होता है। इससे पेयजल के लिए जो उपलब्धता है पानी की, वो भी बढ़ेगी और सिंचाई भी अच्छी तरह से कर सकेंगे।
1: जयपुर में 13 अक्टूबर से जनजातीय हस्तशिल्प और उत्पादों का आदि बाजार लगाया जाएगा। सिविल लाइंस क्षेत्र में 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस बाजार में जनजातीय कारीगरों के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत आयोजित एयर शो में शामिल होंगे। प्रदेश में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज, आपसी राजीनामे से मामलों का निस्तारण होगा और पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। प्रदेश भर में आज पंचायत समिति स्तर पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशालाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर 9:20 हुए हैं। ये सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये है पहली प्रस्तुति, आवाज अनूप जलोटा की है।

अहद कबीर में सूफी संत परंपरा के महान कवि संत कबीरदास की 8 रचनाओं को स्वर दिया गया है। कबीरदास जी ने सत्य की खोज के लिए आजीवन प्रयोग किया। कहा जाए, मोही तो ही लागी नहीं छूटे,

0: सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हुए हैं, ये सुनते हैं कार्यक्रम साजों पर धुन। यह है पहली धुन।

जो धुन सुन रहे हैं ये धुन ली है हमने फिल्म तीसरी मंजिल से, जो कि आई थी 1966 में, और इसका संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने। ये एक बेहतरीन और ऊर्जावान वेस्टर्न रॉक कंपोजिशन तैयार किया था आरडी बर्मन ने। इसमें इस गाने में मुख्य वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो इसमें ड्रम्स

इस धुन की अगर हम बात करें तो इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दमदार और तेज ड्रम बीट्स में है। गाने के ऑन स्क्रीन विजुअल में भले ही अभिनेता शम्मी कपूर से ड्रम बजाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इसमें इसको जेज ड्रमर लेसी गोडिन्हो ने बजाया था।

इसमें आपने अभी जो सेक्सोफोन सुना, इसको बजाया था मशहूर संगीतकार मनोहरी सिंह ने। लीजिए सुनते हैं साजों पर धुन में ये अगली धुन जो है फिल्म कश्मीर की कली से।

दोस्तों, ये अभी आप जो धुन सुन रहे हैं, ये हमने ली है फिल्म कश्मीर की गली से, जिसका संगीत तैयार किया मशहूर संगीतकार ओपी नैयर साहब ने। अगर इस गाने की बात अगर हम करें तो इसमें सारंगी, मैंडोलिन, वायलिन और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से उपयोग किया गया है। अगर इस गाने के संगीत की बात करें तो सारंगी और वायलिन, गाने की शुरुआत और इंटरल्यूड्स में वायलिन और सारंगी के टुकड़ों का शानदार इस्तेमाल किया गया है, जो कि कश्मीर की वादियों को दर्शाने को, उनको जीवित करने के लिए इसका उप

दोस्तों नैयर साहब के संगीत की एक खास बात है कि इसमें तांगा रिदम यानी घोड़ा गाड़ी की चाल जैसी ताल को ढोलक और अन्य सहायक यानी प्रिस्क्रिप्शन के वाद्य यंत्रों के जरिए बजाया

लीजिए पेश है ये अगली धुन, जिसे हमने लिया है फिल्म सीआईडी से, जो कि 1956 में प्रदर्शित हुई थी।

इस गाने को बनाने के लिए काम में लिए गए वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें हारमोनियम, बांसुरी, क्लेरिनेट और एड्रियन का प्रयोग किया गया है, जो कि इस गाने को बहुत ही खूबसूरत बनाता है।

ही मशहूर और मकबूल गीत है और इसका संगीत भी वाकई में इतना कर्णप्रिय है, इतना खूबसूरत है कि सुनने वाले आज भी इसको बहुत ही प्रेम से सुनते हैं। दीजिए साजो की धुन में ये है अगली धुन जो हमने ली है फिल्म श्री 420 से। इसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

दोस्तों, जब ये अपनी ये धुन सुनी, जो ये फिल्म CID के गाने पहला पहला प्यार की ये धुन है, ये गाना अपने वक्त का

जैसा कि आप इस धुन से ही समझ गए होंगे, ये गाना रमैया वस्तवैया है और इसकी ये धुन आप सुन रहे हैं जो कि तैयार की थी मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। अगर इसके वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हारमोनियम का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है जो कि धुन और मुख्य सुरों के लिए इसको काम में लिया गया है। माउथ ऑर्गन धुन और शुरुआती संगीत में इसका प्रमुखतया उपयोग किया गया है प्रमुख रूप से।

मेंडोलिन और गिटार का भी इसका इसमें उपयोग किया गया है और हल्के संगीतिक संगत के लिए बांसुरी का भी उपयोग किया गया है।

इसी धुन के साथ साजों पर धुन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। यह है पहली पेशकश।

अभी आपने गाना ये सुना फिल्म आवारगी से। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी का के बोल और अनु मलिक का संगीत। यह है अगली पेशकश।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए, दिनांक 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल जैविक खेती नए आयाम विषय पर राज्य की जनता से रूबरू होंगे। जैविक कृषि पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीधे बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं 2200600 और 2366477। जयपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0141 डायल करें। समय एक बार फिर आपको बता दें, 10 अक्टूबर शनिवार सुबह 11 से 12 बजे। सुनना न भूलें जैविक खेती नए आयाम विषय पर कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल से सीधा।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म निगाहें से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये अगला गाना।

0: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
2: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मोहम्मद अजीज़ की गाए फिल्म नकी नकी इसी गीत के साथ गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है आकाशवाणी नागौर का यह है चिरमी चैनल। पेश हैं गाने नए तराने नए, यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म रामलीला से श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये गाने नए तराने नए की अगली पेशकश।

ये गाना आप सुन रहे हैं फिल्म मेट्रो से सोहम की आवाज़ में। सईद कादरी और संदीप श्रीवास्तव अमिताभ वर्मा की भूल हैं।

0: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशॉर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम?
1: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
0: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
1: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
0: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
2: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम, घटकों, नियम और शर्तों के लिए विक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

0: अभी आपने सुना ये गाना फिल्म जयहो से श्रेया घोषाल और शबाब साबरी की आवाज में।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: गाने नए तराने नए में अभी आपने सुना ये गाना फिल्म लव यात्री से दर्शन रावल और अनीश कौर की आवाज़ में। लीजिए सुनिए ये गाने नए तराने नए की आखिरी पेशकश।
1: कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

विशाल ददलानी और रेखा भारद्वाज के गाए फिल्म ये जवानी है दीवानी के साथ गाने नए तराने नए अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल के साथ जैविक खेती के नए आयाम विषय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम।

0: नमस्कार 101.2 एफएम जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से मैं हूं जितेंद्र वर्मा और आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम में आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि आयुक्त राजस्थान नरेश कुमार कोयल साहब आईएएस और आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं जैविक खेती नए आयाम विषय पर। तो सबसे पहले तो नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
1: जी जी। सब श्रोताओं को मेरी ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन स्वागत
0: जी। नरेश जी सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे जो हमारा आज का विषय है, एक बहुत ही ज्वलंत विषय है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जैविक खेती। तो ये जैविक खेती नए आयाम विषय पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जैविक खेती है क्या।
1: मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैविक खेती एक्चुअली मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मिट्टी क्या है, उसकी उर्वरा शक्ति क्या है।
0: जी
1: एक्चुअली मिट्टी एक मात्र मिट्टी के कण नहीं होके पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, इको सिस्टम है।
0: जी
1: उसमें आप देखेंगे कि एक चम्मच मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं।
0: जी
1: प्राकृतिक खेती जैविक खाद खेती इन सूक्ष्म जीवों के साथ प्राकृतिक संतुलन करते हुए उनको नेचुरली ढंग से बढ़ाते हुए
0: जी, जी।
1: उनके तारतम्य के साथ एक प्राकृतिक ढंग से खेती करना है।
0: जी
1: एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि जैविक खेती का मतलब लोग छोटा सा ले लेते हैं, सब गोबर डालना जैविक खेती होगी। नहीं ये नहीं है। जैविक खेती बहुत विस्तृत विषय है जिसमें हम कहें कि हरी खाद वर्मी कंपोस्ट ढेंचा का हम मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। वहीं इसमें भी फर्टिलाइजर है

0: इसमें भी पेस्टिसाइड है, लेकिन वो
1: जी
0: जैव है, जैव
1: जी
0: उर्वरक है, जैव कीट नियंत्रण
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: नीम आधारित उपयोग उसमें रहते हैं। इसमें मल्चिंग और जो अवशेष रेजिड्यू होता है फसल के करने के
1: जी
0: बाद जो हो
1: जी
0: जाता है उसका प्रबंधन
1: जी
0: है,
1: जी
0: मिट्टी की जांच करते हैं, पोषक तत्व है। ये एक परंपरागत लेकिन आधुनिक खेती है, इसके बहुत सारे आयाम हैं।
1: जी
0: जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें हम बात करें तो एक जीवामृत है,
1: जी जी
0: बीजामृत है।
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: क्या करते हैं कि गुड़ बेसन से एक घोल तैयार करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि ये कोई टोटका तो नहीं, गुड़ डाल लें और
1: जी
0: बेसन डाल
1: जी
0: लें।
1: जी जी
0: फिर
1: जी
0: जब मैं और ज्यादा मैंने विस्तृत जानकारी ली तो पता चला कि ये जो घोल तैयार करते हैं गुड़ और बेसन का
1: जी
0: और कुछ और तत्वों का, तो उससे जो सूक्ष्म करोड़ों जीव हैं उन जीवों को वो सक्रिय करता है, और वो जीव इस गुड़ और बेसन को खा के उनका एक साथ बहुत बड़ी संख्या में विस्तार होता है, और वही
1: जी
0: खेती को समृद्ध बनाते हैं, उन्नत
1: जी
0: करते हैं,
1: जी
0: है ना। और इसमें पंचगव्य भी है, जैसे हमारे पंचगव्य आप जानते हैं, दूध, दही, घी, घी, गोमूत्र, गोबर, इसको पंच घी का एक ट्राइकोडर्मा है जो कि फंगस से बनता है, और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रयोग करता है, वो जैविक खेती में काम आता है। फसल चक्र है इसमें,
1: जी
0: इसके अंदर जो मिश्रित फसल का भी रहते हैं, हम मृदा प्रबंधन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो मूलतः जैविक खेती बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, इसको
1: जी
0: एक खाली गोबर डालने तक सीमित नहीं करें। आगे की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि
1: जी
0: किन किन में क्या क्या लोगों ने फायदा लिया और क्या क्या
1: जी
0: इनका किस तरह से उन्होंने खेती की।
1: जी नरेश जी, अब क्योंकि हम जैविक खेती की अब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब हम भारत देश की बात करें, एक समय था जब हरित क्रांति आई थी और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग शुरू हुआ था अपनी फसल को बढ़ाने के लिए या उसमें अधिक उत्पादन लेने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय आकर के जो रासायनिक हमारी खेती हो रही थी उससे जमीन को, भूमि को, मृदा को बहुत नुकसान हुआ, और इसी वजह से हमें फिर से जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ने का मतलब कोशिश करना पड़ रहा है। तो क्या ये इसकी आवश्यकता वास्तविकता में, क्या रासायनिक खेती से हुए नुकसान की वजह से जैविक खेती की आवश्यकता अधिक है, या जैविक खेती से कुछ और भी लाभ मिल सकते हैं?
0: आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है वर्मा साहब। इसमें एक्चुअली मिट्टी के लिए अधिक जो फसल उत्पादन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, सल्फर चाहिए, तो उस वक्त देश एकदम इस चीज के लिए तैयार नहीं था, तो हमने बहुत बड़ी संख्या में जो रासायनिक उर्वरक है, टीएपी,
1: जी
0: यूरिया,
1: जी
0: एनपीके, उनका इस्तेमाल किया।
1: जी जी
0: उसका नुकसान ये हुआ कि धरती की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई।
1: जी
0: आप और जो सूक्ष्म जीव जीव जिनके माध्यम से हम खेती का एक जो सही रूप वो देख रहे थे प्राकृतिक, वो खत्म हो रहा है। देखिए, शुद्ध आहार का और अमृत आहार से ही परिवार स्वस्थ रहता है। अगर आप एक चीज देखें कि आजकल आपको बड़ा, मैं बताते हुए दुख हो रहा है कि एक ओर तो हम धरती को माता कहते हैं और दूसरी ओर उसके सीने पे इतनी बड़ी संख्या में पेस्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी इतना सारा डाल रहे हैं, तो उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है। उसके कारण ये हुआ कि भूमि बंजर होती जा रही है। आप देखें गली मोहल्ले में कैंसर के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड यूरिया है उनको कैंसर
1: जी
0: के मरीजों को इतना बड़ी संख्या में वो बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कारण हमारी धरती बंजर होती जा रही है।
1: जी
0: तो ये एक समय की आवश्यकता होगी कि हम वापस से ये इस पे विचार करें। यूरिया और इनका युग जरूरी है, लेकिन संतुलित प्रयोग जरूरी है।
1: जी
0: और इसके साथ क्या हमारी जो परंपरागत भारतीय कृषि जो है उसमें बहुत सारी तकनीकें मौजूद है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, भी हनुमानगढ़ कस्बे में गुलाबी सुंडी का कपास में बहुत बड़े पैमाने पे प्रकोप
1: जी
0: हुआ।
1: जी
0: अब हमने वहां पे श्री राम संताय संस्थान है कोटा, उनके माध्यम सहयोग से 150 खेतों में 150 किसानों के साथ प्रयोग किया, परंपरागत हमारा नीमास्त्र का।
1: जी
0: तो मुझे एक किसान, मैंने आज उनको बोला भी, आप सुनिएगा और जुड़िएगा भी हमारे प्रोग्राम से, एक झाझड़िया जी है, उनका आया फोन के साथ, हर साल में 12 से 15 वहां पे पेस्टिसाइड का छिड़काव करता था
1: जी
0: बार, एक एक फसल के लिए।

0: और फिर भी फसल नहीं बचती थी। अब की बार उन्होंने हमारे जो नीमास्त्र और ये जो हमारे संस्थान है उसके माध्यम से प्रयास किया, तो कह रहे हैं सब 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघा हमारा उत्पादन हो रहा है और भाव भी बहुत अच्छा है सब। इस बार हम निहाल हो गए और सुंडी बिल्कुल भी प्रयोग उस पर नहीं हुआ। तो ये जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ अगर हमारी धरती जहां से पौधे आके आ रहे हैं वो अगर हम पे आएंगे अंदर ले जाएंगे तो उसका क्या दुरुपयोग अंदर होगा आप सोच नहीं सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं कि पेस्टिसाइड किस तरह के से नुकसान है। आपको भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी ध्यान होगा, वो क्या थी, वो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी और उसकी गैस थोड़ी सी लीक हुई और धीरे धीरे वो पूरा जो टर्बाइन है उससे निकला, तो आप देखिए हजारों लोगों की गैस से मृत्यु हुई। वही पेस्टिसाइड्स हम खेतों में हमारे यूज होता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी के माध्यम से पानी में जमीन में जा रहा है, फसलों में आ रहा है और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं
1: जी, जी।
0: तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी महामारी आने वाली है रासायनिक खेती से, कैंसर जैसे हर गली मोहल्ले में कैंसर के मरीज हो रहे हैं, तो हमें इस पर पुनर्विचार करना है, हमें सोचना है
1: जी। नरेश जी, हम आपसे जैविक खेती के बारे में बातचीत तो करते ही रहेंगे, हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि वो भी अगर जैविक खेती से जुड़े हुए उनके कोई सवाल हैं, कोई उनके मन में शंकाएं हैं, तो वो हमसे बातचीत कर सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में फोन लगा के। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं 2200600, और जयपुर के बाहर से अगर कोई श्रोता हमें फोन कर रहे हैं तो वो जयपुर का एसटीडी कोड 0141 जरूर लगाएं और आप सीधे संवाद कर सकते हैं जैविक खेती के बारे में, या जैविक खेती से जुड़ी हुई कोई भी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। नरेश कुमार गोयल, आईएएस, कृषि आयुक्त राजस्थान सरकार, आज हमारे साथ में उपस्थित हैं और सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रासायनिक खेती से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, मानव शरीर में भी पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड्स या जो हम और फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं रासायनिक, वो कहीं ना कहीं उसका कोई एक अंश हमारे शरीर में पहुंच रहा है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। और कई जगह हमने ये भी देखा है कि ट्रेन ऐसी चल रही है जिसको कैंसर ट्रेन के नाम
0: बहुत
1: से
0: बहुत सही है, बीकानेर जो आती है इधर जिस बेल्ट में सबसे ज्यादा जो धान का कटोरा कहा जाता है हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर और पंजाब उधर से, तो धरती का जो ऊपरी सतह इतनी हार्ड हो गई है उसमें पानी नीचे नहीं जा रहा, उसमें आने वाले मतलब ये 10-15 सालों में हम बिल्कुल हमारी जमीनों को बंजर कर डालेंगे अगर हमने इसी गति से हम बढ़ते रहे तो।
1: जी नरेश जी, अभी जैसा कि हमने जैसे ही अपने श्रोताओं को कहा कि वो हमें फोन कर सकते हैं, एक श्रोता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते सर।
1: हाँ नमस्कार, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं।
2: सर मुकुंद नागर बोल रहा हूँ, मैं झालावाड़ से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ, नमस्कार मुकुंद जी।
2: जी सर नमस्ते सर,
0: नरेश गोयल बोल रहा हूँ, कमिश्नर एग्रीकल्चर।
1: जी
2: जी सर,
1: पूछें सर, सवाल पूछें
2: सर। मेरा सवाल है सर, चूंकि जैविक खेती में हमें कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि हम स्प्रे तो करते हैं जैसे नीमास्त्र हो गया या हमारा कोई भी जो हम जैविक कीटनाशी बनाते हैं उससे तो करते हैं, पर उसका असर उतना नहीं होता जितना रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, उतना रिजल्ट नहीं मिलता बजाय रासायनिक के।
0: देखिए ये आप हमारे जो हमने है ना अभी एक प्राकृतिक श्री राम शांता संस्थान कोटा में प्राकृतिक हमारे खेती के लिए हमने MOU किया है, तो आप उनका विधि में एक के बजाय दो करें। कई बार फसल आधारित होता है, एरिया आधारित भी होता है, तो वो मौसम आधारित भी होता है, तो थोड़ा सा आप हमारी हमने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की हुई है उस पर आप संपर्क करें राम शांता संस्थान में एक बार कोटा, चूंकि आप बहुत झालावाड़ नजदीक हैं, आप गए हैं क्या वहां पे?
2: जी सर मैं एक बार जाके आया हूँ।
0: हाँ तो वहाँ
2: जो तकनीकी बताई थी,
0: हाँ,
2: 10 पर्णी जो बताया था,
0: हाँ,
2: 10 पर्णी का भी मैंने उपयोग किया सर, सोयाबीन
0: हाँ,
2: की फसल में अभी इसी साल,
0: हाँ,
2: पर सर वो परिणाम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था।
0: देखिए जो... आपको एक बार ये लगता है लेकिन वो सूक्ष्म जीव है जो मित्र कीट है उनके कारण हमें लगता है कि है, लेकिन अल्टीमेटली आपका देखिए एक बार इतने सालों से हम फर्टिलाइजर पे जा रहे हैं, अचानक हम चेंज करेंगे थोड़ा सा असर आता है, लेकिन पहले साल बराबर रहेगा, दूसरे तीसरे साल हमारा जो अनुभव है हमने उनसे जो हम जो भी काम कर रहे हैं पूरा वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं, खेतों में हम पूरा उसका टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके जो ATC में प्रयोग है वो कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि से करके, फिर उसके बाद करते हैं, तो आप डिटेल हमें और दीजिएगा, हम उस पर चर्चा करके आपको

0: संपर्क करेंगे।
1: जी लगता है कि आप जो हमें श्रोता ने कॉल किया था, जो फोन किया था, उनकी शंका का समाधान हुआ होगा और निश्चय ही आपने जहां बताया वहां पर संपर्क करके वो अपनी शंकाओं का और समाधान ले सकते हैं। नरेश जी, हमारे साथ में एक श्रोता और जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ सर, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: हाँ जी
0: नमस्कार जांगड़े साहब, खूब आपने छत्तीसगढ़ से संपर्क किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में है।
1: जी बताएं जांगड़े साहब।
2: जी सर, हम ये जानना चाहते हैं जैसे जैविक खेती हम आज भी करते हैं तो क्या वो उत्पादन में हमको थोड़ा सा प्रभावित नहीं करेगा? जो आजकल खेती कर रहे हैं लोग, रासायनिक खादों का छिड़काव करते हैं बहुतायत रूप से।
1: जी जांगड़े साहब, आपके सवाल का जवाब आप अपने रेडियो सेट पे सुनिए।
2: जी धन्यवाद।
0: हाँ जांगड़े साहब, मैं फिर से करूंगा आग्रह कि अगर हम पूरा शुरू से देखिए, इसके कई स्टेप हैं। पहला स्टेप तो ये होगा कि क्या आपने अपना मिट्टी का सैंपलिंग और टेस्ट कराया है कि आपकी मिट्टी में क्या क्या चीज की आवश्यकता है पोषक तत्वों की। फिर क्या आपने हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, ढेंचा हमने उसमें तैयार किया है क्या, फसल चक्र सही है क्या, ये शंका है। पर हमारे जो अनुभव आए हैं, जो हमारे रिसर्चेज हमने की है, शुरू में पहले साल चूंकि आप एकदम ऑर्गेनिक से उससे फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक में आते हैं तो थोड़ा संभावना है कि पड़े, लेकिन वो बराबर है, इतना बहुत ज़्यादा कमी वाला नहीं है। अगर आप पूरा सिस्टमेटिक चलते हैं, हमारी जो रिसर्चेज आई है, जो हमने पेपर पब्लिश किए हैं, जो हमारी एसओपी बनी है, ट्रायल्स हुई है, उसमें ये आया है कि दूसरे तीसरे साल से इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और दूसरा आप उससे भी जोड़िएगा कि मान लीजिए आपका 10% उत्पादन कम हुआ है तो लेकिन आपके प्राइस में 25-30% की वृद्धि हुई है। और साथ में आप उसको भी जोड़िए कि जो आप स्वास्थ्य अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कमा रहे हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। तो आप मल्टीपल एंगल से इसको देखिए, हो सकता है एक या दो साल में कुछ असर आए, लेकिन आगे ये बहुत अच्छा सिस्टमेटिक चलेगा। आप सारी चीजें करिए, इसमें मल्टीपल है, जैसे जैव उर्वरक भी है, जैव कीट नियंत्रण है, वर्मी कंपोस्ट है, और जो मैं बता रहा हूँ नीम आधारित उपाय हैं, जहां आप तुलसी का आपका देखे कि जहां तुलसी के पौधे लगे, मल्टीपल। मैं शुरू में मैंने जैसे आग्रह किया कि जैविक खाती खाली एक जो ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र ये करने का नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है और हम इस पे पूरा काम कर रहे हैं। आप इस तरह से तैयार करिए और कभी समय मिले तो राजस्थान में हमने काफी इसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है, क्लस्टर्स बनाए हैं, उस पे आप आके देखें तो आपको बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा आपके।
1: जी नरेश जी, बातचीत हमारी जैविक खेती पर चलती रहेगी, लेकिन चूंकि इस समय श्रोता हमें सुन भी रहे हैं और ये प्रोग्राम है एफ एम 101.2 FM पर, तो हम एक सॉन्ग के लिए रुकते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर से आपसे बातचीत करते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है 101.2 एफएम जयपुर अजमेर के आमेर चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल आईएएस, और आज हम बात करें जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है और इसके नए आयाम क्या हैं। नरेश जी, हमारी बात चल रही थी, श्रोता ने भी हमसे पूछा था कि अगर हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यील्ड थोड़ी सी कम होने की संभावना रहती है, कहाँ तक ये बात सही है और कहाँ तक ये मिथ साबित होती है?
1: देखिए, मैंने जैसे आग्रह किया कि जैविक खेती एक पूरा पैकेज है
0: जी,
1: है ना जी। आप कहोगे कि साहब मैंने गोबर डाला और मेरे तो वो नहीं हुआ, इट्स नॉट दैट। मैंने कहा कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको मिट्टी उस तरह से तैयार करनी होगी, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और ढेंचा बीज राज्य सरकार ने शुल्क वितरण किए हैं वो करें, फिर जैव उर्वरक और वो सारी चीजें, बहुत सारे मल्टीपल है। कुछ जगह पे आई है कि शायद कम हुआ है, बट हमारी जो रिसर्चेज हैं जो हमने किया है, पहले साल इवन और दूसरे तीसरे साल में हमारा उत्पादन बढ़ा है इसमें
0: जी, जी।
1: अलग कंडीशन वही है कि आप पूरा प्रशिक्षण लें, पूरी जानकारी लें, खाली व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चले, हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में आए, उनसे सीखें, हमारे जो प्रैक्टिस ऑफ जो पैकेज है उसको देखें, हमारी जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग चलें। उसमें आपको निश्चय ही, मैंने एक हनुमानगढ़ का भी बताया है ना आपको, आप कोशिश करो, अगर वो हमारे किसान उधर के कोई हनुमानगढ़ के जिन्होंने 150 किया उनमें से अगर कोई सुन रहे हो तो वो बताएं लोगों को क्या आपने किया। वो तो उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि साहब 10-12, 10-11 हजार का रेट है और 8 क्विंटल हो रहा है, हम तो निहाल हो जाएंगे, सर आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो हम पूरे प्रदेश में इसके प्रयास कर रहे हैं कि इसका विस्तार हो।
0: गोयल साहब, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे, एक श्रोता फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो।
2: हाँ सर।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: सर अंशराज मीणा बोल रहे हो, बिंदाय की जैविक कृषि फार्म से, अपना छोटो सोक।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: जिला जलावा ले रहा
0: जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं
2: सर। यूं करो, मतलब जैविक खेती बढ़िया बात है, पर सर बीज, मतलब जो दूर खेती कर रहे थे ना, जिससे जमीन खराब होगी, मतलब बीज काफी ज्यादा, जो मतलब 20 किलो पड़ गया, जब मतलब 40-50 किलो पड़ गया, जितनी मतलब उगने रहे अंकुरित हो रहे हो सर। मतलब
1: मीणा साहब, आपने एक बात पूछ रहे हूँ, आपने बीज ट्राइकोडर्मा डाले हो, कौन डाले हो? मैं आप वही पूछ रहे हूँ कि थे आप ये कह रहे हो ना कि आपका बीज ज्यादा डालना पड़ा, आपको
2: ज्यादा डालना पड़ रहा
1: है? मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटीज, हमारे जो सेंटर्स हैं वो खुद उत्पादित कर रहे हैं। आपने सुना है ट्राइकोडर्मा का नाम?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो ट्राइकोडर्मा, आप अपना जो बीज तैयार करें, एक तरीके का फंगसाई है और बहुत डिमांड है, हम जितना डिमांड है उसकी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसमें बीजों का आप अच्छे से उपचार करें लगाने से पहले, फिर आपका बीज की क्वालिटी कौन सी है वो देखें कि बीज कौन सा है आपका। अगर आपने बहुत पुराना बीज ले लिया तो सही नहीं होगा, आपने उसका अगर उसमें नमी सही नहीं है तो उसकी दिक्कत आ सकती है। फिर भी अगर आपको कोई हो तो आप हमारे विभाग में बताएं, हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे। और एक और मैं आपको मीना जी को और बताना चाह रहा हूं सर, आपके माध्यम से भी, हमारा एक इंस्टीट्यूट है सीएम, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, मंत्री महोदय ने, कृषि मंत्री महोदय ने अभी कल ही फाइल अप्रूव करी है। अब वहां भी, अभी तक तो वो खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग के लिए था, अब हमारा बहुत बड़ा हाल है, हम वहां पे बुला के नियमित रूप से प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को बताएंगे। तो आप वहां पे आए, पूरा विधि से हम करेंगे, वो किसानों के लिए हमने खोल दिया, वो किसान भी वहां ट्रेनिंग ले सकते हैं, अभी वहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी ले सकते थे। तो मीणा साहब आप आइएगा, हम आपको पूरा बताएंगे, बीजों का पूरा उपचार करके अगर आप करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको।
0: जी गोयल साहब,
2: बहुत धन्यवाद सर।
0: मीणा जी आपका बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, अभी अभी आपने कहा कि किसी भी तरह से अगर हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह की ट्रेनिंग जैविक खेती के लिए दे रहा है, कहां दे रहा है, और किस प्रकार से किसान अगर उससे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं?
1: देखिए, बहुत विस्तृत विषय आपने पूछा है, तो मैं आपको पूरा इसके

0: बारे में निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं प्राकृतिक खेती के लिए बहुत संवेदनशील है, प्रमोट कर रहे हैं कि हमें धरती माता बचाओ अभियान शुरू करना है, हम कर भी रहे हैं। तो अभी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2024 में शुरू किया है भारत सरकार ने, जिसमें राज्य का भी 60-40 का रेशियो है। 2500 करोड़ की योजना है, उसमें 7.5 लाख हेक्टेयर में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जो मैं चीज मैन बताना चाह रहा हूं, जो सवाल आपका है, 15,000 हम प्राकृतिक खेती के क्लस्टर्स बना रहे हैं। उस हर एक क्लस्टर में किसानों की संख्या अलग अलग रहती है। उन किसानों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनका सर्टिफिकेशन करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कर रहे हैं, उनको हो जाए। फिर एक बीआरसी हम बना रहे हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जहां भी किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लस्टर में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10,000 बने पूरे देश में, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती के जो क्लस्टर बन रहे हैं, उनमें ट्रेनिंग हो रही है। जैसे मैंने निवेदन किया कि हमारा जो सियाम इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है, अभी तक अधिकारी कर्मचारी की होती है, वो किसानों के लिए हमने खोल दिया। वहां पे हम नियमित रूप से इसका ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। एक हमारे ATC होता है, जहाँ पे ट्रायल सेंटर है, ये यहाँ पे हमने प्राकृतिक खेती के बेड बनाए हैं। फिर से मैं श्री राम शांताय संस्थान कोटा का आभारी हूँ कि उन्होंने सब जगह के प्राकृतिक खेती के बेड्स बनाए हैं और वहाँ पे क्लस्टर्स बनाए कि किस तरह से वो ट्रेनिंग करेंगे। फिर एक जो ट्रेनिंग है हमारे जो KVKs हैं, हमारे कृषि विकास केंद्र है, वहाँ किसान विकास केंद्र है, वहाँ भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक हमने कृषि सखी जो है उस पे हमने उनको कृषि सखियों को एक्टिव किया। वो कृषि सखियां घर जा जा के किसानों को ट्रेनिंग दे रही हैं। और पहली बार हमने 20 लाख रुपए के नगद इनाम इन कृषि सखियों को देने की अगले महीने से शुरू कर देंगे। इसमें वो घर घर जाएंगी और ट्रेनिंग देंगी।
1: गोयल साहब, हम अपनी इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक श्रोता, एक लिसनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं श्याम मिड्डा बोल रहा हूँ जी, जिला हनुमानगढ़ संगलिया से जी।
1: जी जी,
0: नमस्कार मिड्डा साहब, कैसे हैं?
2: नमस्कार जी सर, ठीक है सर। मेरा एक सवाल था
0: जी। जी मिड्डा साहब,
2: जैविक खेती के जो उत्पाद होते हैं, हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं
0: जी जी,
2: इनके कोई मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं जी?
0: चलो, आपने एक मिड्डा साहब, मेरा तो बहुत अच्छा आपने खुद जवाब मिल गया एक श्रोता से कि इनके उत्पाद बड़े महंगे मिलते हैं। तो जैविक खेती करने वाले भाई बहन ये समझें कि आपके उत्पाद महंगे मिलेंगे। क्योंकि मिड्डा साहब, क्या होता है कि ये कोई आप नई चीज करते हैं तो उनको मार्केटिंग प्रॉपर मिलना करना, वो बड़ा एक प्रश्न रहता है। इस कारण जो उत्पाद हैं वो थोड़े महंगे हमें लगते हैं, पर स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है मिठा साहब। तो स्वास्थ्य जो स्वस्थ अगर है, मैं हमारा परिवार है, हमारी पीढ़ियां हैं, अगली पीढ़ियां, तो थोड़े महंगे जरूर हैं और महंगे होने चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं कि जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद है, ताकि किसान जो इसमें मोटिवेट हो सके। हाँ, आपका ये एक सजेशन है कि इसमें हम एक वो प्लान कर रहे हैं कि हमारा एक इसमें पोर्टल बने, उस पोर्टल पे सारे उत्पाद जो हमारे सर्टिफाइड एजेंसी के हैं, सारे उत्पाद रहें, आप सीधा ऑनलाइन भी उसमें कर सकें, आपको रेट्स भी मिल रहे हैं। ये हम काम कर रहे हैं आपकी मंशा के अनुरूप
1: जी। गोयल साहब, जैसा कि उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेशन होने के बाद में प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं वो काफ़ी हो जाती हैं। यहाँ हम फिर वही चीज़ है कि सर्टिफिकेशन की बात पर आते हैं, तो सर्टिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है, और अगर कोई किसान जैविक खेती कर रहा है तो वो उसके जैविक सर्टिफिकेशन के लिए कहाँ, किस तरीके से उसको सर्टिफाई करवा सकते हैं?
0: जी जी वर्मा साहब, हमारे राजस्थान में रसोका है, एक राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी
1: जी।
0: ये जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं उनको सर्टिफाइड करते हैं, और वो ऑनलाइन सबका विवरण उपलब्ध है कि किन किन का। इसका बड़ा सिस्टमेटिक है, हर साल उनका परीक्षण होता है, उसके उत्पादों की टेस्टिंग होती है। और हमने अब की बार इसको पहले रेट ज्यादा थे, अब हमने सिर्फ 500 रुपए कर दिया। 500 रुपए में प्रदेश का कहीं से भी कोई भी किसान इसमें अप्लाई करके कर सकते हैं, और जिला स्तर पे भी हमने इसको स्ट्रोंग किया है कि कोई भी आके अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान

0: का, वहां तो हम प्लान कर रहे हैं कि पूरे जिले के जिले उसमें जो प्राकृतिक खेती के लिए रजिस्टर हो। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आप जिला अधिकारी हमारे कृषि विभाग से संपर्क करें, रसोका हमारा जो कृषि विपंत कृषि भवन में पूरा स्टेट हेडक्वार्टर है, पूरी टीम है, वहां भी आप इसमें संपर्क करके करा सकते हैं
1: जी। गोयल साहब, यहाँ एक थोड़ा सा हम कंट्रोवर्सी वाली बात भी करना आपसे चाहेंगे कि कई
0: जी।
1: बार एक सर्टिफाइड जो आपका प्रोडक्ट है उसके साथ माल फंक्शनिंग भी होने की संभावना रहती है, तो उसका मॉनिटरिंग का क्या मैकेनिज्म है कोई, या डेवलप किया जा रहा है?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने जैसे निवेदन किया कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है सारी सूचनाएं, और किस तरह से इसकी जानकारी आप ले सकते हो, पोर्टल में पूरी डिटेल उपलब्ध है कि कौन कौन सी एजेंसी है। हमारा इनके रेगुलर सैंपल लिए जाते हैं, जब नवीनीकरण होता है हमारी टीम जाती है, देखती है, और निरंतर अगर एक बार किसी ने बेच लिया तो अगले साल वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो रेजिड्यू जो टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि ये इसने पेस्टिसाइड यूज किया है कि नहीं है। तो
1: जी।
0: इसका हम ध्यान रखते हैं, और फिर हर जगह हमने जो प्रोडक्ट होता है उस पर हम सर्टिफाइड करते हैं कि ये आप इस पर ये लिखा है। ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन लाइव रखिए। कोई भी व्यक्ति इसमें पोर्टल पे जाके डिटेल ले सकता है कि किस किस का रजिस्ट्रेशन है, कब हुआ, इसकी वैलिडिटी क्या है, पूरा इसमें साइंटिफिक ढंग से। हाँ, अगर कोई शिकायत भी मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पे कोई दूसरी चीज नहीं सेल करें।
1: जी गोयल साहब, हम बातचीत तो अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि हम कार्यक्रम में बैठे हैं, तो अब हम थोड़े से मनोरंजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक गीत और सुनते हैं।
0: बिल्कुल जी।

0: सुन रहे हैं जैविक खेती नए आयाम और आज हमारे साथ में एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल जी उपस्थित हैं। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती नए आयाम के विषय पर। और गोयल साहब, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम संतोष खेदड़ है, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से बोल रही हूँ।
0: जी बताएं।
2: नमस्कार संतोष जी।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्ते, आप कैसे हैं?
1: ठीक है सर।
2: ये तो मेरी लॉटरी लग गई, आप जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हमारे। मैं वर्मा साहब बताना चाहूंगा, अभी परसों ही हमसे मिले हैं ये
0: जी,
2: और
0: जी।
2: इनका काम देखते हुए इनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राज्य सरकार की ओर से। महिला ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी हमारी
0: जी।
2: और 10,000 रुपए हम इनको प्रति माह देंगे और हमारे इस सब जगह ट्रेनिंग में जाएंगी। इनकी एक और खासियत है, ये अनार क्वीन के नाम से फेमस है वहां पे। तो आप अपने प्रोग्राम में आप जुड़े, बहुत बहुत आभार। आप बताएं संतोष जी, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं?
1: सर मैं जैविक खेती के बारे में बताना चाहूंगी कि जो हमारी जो ये धरती है इसमें जो किसान भाई जहर डाल रहे हैं उससे हमारी खेती है वो खराब हो रही है। और सबसे ज्यादा हमें जैविक खेती की ओर ध्यान देना है, क्योंकि उसमें हम अगर जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है वो बना करके हम डालते हैं तो हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो ज्यादा बढ़ेगी और इसमें हमें आमदनी है वो भी ज्यादा होगी। क्योंकि सभी किसानों को मैं बागवानी की ओर लाना चाहूंगी, इसके अंदर हमारी एक तो पानी की बचत होगी और इसके साथ ही हमें उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, ताकि किसान भाई उसे अगर बेचता है कहीं पर भी तो उसकी डबल कीमत मिलेगी और रसायन से उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, वो सभी इन्हीं दौलत से आ रहा है। बिल्कुल केमिकल हम बंद करना चाहते हैं
2: जी। मेरे को तो मैंने तो थे एक सवाल को जवाब वो बताओ, मैं थारी भाषा में बात कर रहा हूँ भाई। लोग आके लग रहे कि सब इसमें उत्पादन कम हो, तो थारो अनुभव के कम हो ज्यादा हो कहीं सुझे थारो?
1: देखो साहब, एक माए आमदनी की एक माए उत्पादन है ना, वो कम हो सी तो बिन अपन रेट डबल मिल रही है तो बात तो बैठे ही आगी।
2: सही कह रहे हो।
1: हाँ, तो सही किसान भाई में आई करना चाहूँ कि अगर आपने उत्पादन कम हो रहे सिर्फ 1% को फर्क पड़े, वो भी 1 या 2 साल के लिए, बाद में वो बैठे ही आ जाए है। तो इसलिए अपन इनकम मिल रही है तो अपन डबल मिल रही है। देखिए अगर रसायन को 100 रुपये में दे रही तो बी की रेट अपन 300 मिल रही है तो बी को बैठे ही अपन मिल रहे हैं। तो इसलिए से किसान भाई नहीं आई कहूँ की अपन रसायन बिल्कुल छोड़ना है जी। साबो पंजाब में कैंसर की ट्रेन चल रही है जी, साबो राजस्थान में न चल जाए।
2: बहुत बहुत अच्छी बात कही है। तो थारा घर वाला थाने सपोर्ट करे जो तो काम शुरू करे थे?
1: जी सर, मेरा घर वाला को बिल्कुल मेरा सपोर्ट रहा है। वह क्या करे ना, गाड़ी का 2 पहिया हुए, 1 पंचर हो जाए तो गाड़ी चालकों ने बैठे रुक जाए।
2: अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवहारिक बात है। तो थारे जगह भी थार का नहीं कम है फिर, बहुत सारा प्रोडक्शन ले रहे होते। अनार भी लगा रखे है, सेब भी लगा रखे है, और के करोबा में थे
1: भी? मैं साहब मैं जी मौसमी किन्नू क्या करे ना कि हिमाचल में सेब हो गए, वो सेब भी राजस्थान में लगाए मैं, आपने बादाम है वह भी राजस्थान में लगाई है, हर चीज में राजस्थान में लगा के दिखाई है। और इक्के सा गई ऐ जगह पेड़ मदर प्लांट बाकी मैं पौध नर्सरी तैयार करूं।
2: बहुत बढ़िया। तो थे हमारे सागे कंधों मिला के चलो, आप प्राकृतिक खेती ने और बढ़ावा देवांगा और सारा किसान भाई बहना ने थे बताओ भी थे कर रहे हो और सारो माहौल बढ़िया हो रहे
1: जी। सर सही किसान में यह ट्रेनिंग दे रही हूँ, आज मैं 8 जुड़ रही हूँ तो सही किसान बहन में ये और आकर्षित कर रही हूँ कि अपन बागवानी मानो है और बिल्कुल प्राकृतिक खेती की
2: ओर ही। बहुत अच्छी बात लगी, बागवानी ने भी प्राथमिकता परंपरागत फसलों की बजाय
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोयल साहब, जैसे अभी आप ये महिला किसान प्रगतिशील किसान हैं और ये आपके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इस तरीके से जो जैविक खेती में अच्छे काम करने वाले जो किसान हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, जैसे ये महिला किसान है तो आपको आपने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसी तरीके से अगर कोई अच्छा जैविक खेती कर रहा है किसान तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या फैसिलिटीज डिपार्टमेंट की तरफ से हैं और क्या उन्हें आप प्रोवाइड करवाते हैं?
2: वर्मा साहब, अभी हमने जैसे मैंने किया 3 ब्रांड एम्बेसडर मैं बना चुका हूँ और कोटा का जो श्री राम संताई संस्थान है, थोड़ा सा मैं बार बार उनका मेरे को आभार करने का मन होता है। ताराचंद जी गोयल भाई साहब हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है CSR में। उन्होंने कहा सब जितना खर्च चाहिए बोले, बहुत बड़ा उनका गोयल साहब इनके नाम से उनका काम है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो उनकी मदद से हम बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। दूसरा कृषि सखी का जो मैंने बताया 20 लाख के अवार्ड अगले महीने से हम शुरू हो जाएंगे और राज्य सरकार जो अगर दो साल तक प्रति क्लस्टर हेक्टेयर हम 4,000 रुपए दो साल तक उनको जो प्राकृतिक खेती करता है उसको सुविधा देते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारा जोबनेर यूनिवर्सिटी में है प्राकृतिक खेती का, वहां हम किसान को बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। सियाम में मैंने एक बताया आपको शुरू कर दिया, और जो किसानों को हम विजिट कराते हैं, किसानों को विजिट कराते हैं, दो तरीके की विजिट होती है। एक तो यहाँ पे जो राज्य के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूट है वहां पे विजिट करें, जो लोग हैं उनसे करें, तो दूसरा जो राज्य के बाहर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करें, गुजरात में बहुत बड़ा काम हो रहा है उसमें हम किसानों को विजिट कराते हैं। प्रतिवर्ष हम किसानों को पुरस्कार दे रहे हैं, अभी जैसे पुरस्कार निकले हुए हैं प्राकृतिक खेती पे, 1,00,000 रुपए के पुरस्कार भी हम देते हैं किसानों को कि जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं। उनको अभी 15 अगस्त पे मैंने बहुत सारे किसानों को बुलाया, उनको सम्मान किया, उनको डिटेल से जो किसान उनको ट्रेनिंग दिलाई किया, इस तरह काम हम कर रहे हैं।
0: गोयल साहब, हम अपनी बातचीत पर आगे बढ़ेंगे, फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ में जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो, हेलो
3: जी,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: राधे राधे।
0: राधे राधे,
2: राधे राधे जी।
3: ये मेरा नाम रमेश शर्मा है
0: जी,
3: मैं राजस्थान के डीग जिले के कामबन क्षेत्र का किसान हूँ।
2: नमस्ते,
0: बताएं
3: जी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की प्रेरणा पे मैं प्राकृतिक और जैविक खेती करे इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ।
2: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
3: मारो मानो है कि खेती केवल अनाज पैदा के जरिए ना है, बल्कि धरती मैया की सेहत, पर्यावरण की रक्षा और किसान परिवार की खुशहाली को आधार है।
2: बहुत बढ़िया जी।
3: और प्राकृतिक और जैविक खेती से मैंने कई फायदे देखे हैं
2: जी।
3: पहली बात तो ये है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक से निर्भरता घटाने से खेती की लागत में कमी आई है।
2: बहुत जी।
3: दूसरी बात, गोबर गौमूत्र और फसल से बचे हुए अवशेष से मैंने गांव में प्राकृतिक खेती के कई सारे काम करे हैं।
2: बहुत बढ़िया।
3: इससे मिट्टी की भी उर्वरता बनाए रखने का काम हो रहा है और जाते जमीन की भी सेहत सुधर रही है
0: जी।
3: मेरा तो ये मानना है कि धरती मैया स्वस्थ रहेगी तो खेतीबाड़ी भी अच्छी होगी और किसान भी खुशहाल रहेगा।
2: बहुत बढ़िया बात की जी, आप सही कह रहे हैं। अगर धरती को हमें आगे वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो हमारी मिट्टी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी
0: जी।
3: बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। हमारी तो यही इच्छा है साहब कि अपने खेत में प्रकृति और जैविक खेती अपनाएं और ऐसी मिसाल पेश करें कि किसान भाई की प्रेरणा मिले और जाते धरती मैया की भी रक्षा हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो सर।
2: बहुत बढ़िया। हम मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे श्रोता को कि राज्य सरकार ने अभी धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया, इसमें हम किसानों को पूरी जो अवर्मा से पूछे थे पूरी ट्रेनिंग दी हमने जी, बताया उनको, व्यवहारिक ट्रेनिंग हुए, सेशन हुए। इसी तरह एक अभियान शुरू किया आपनो खेत आपनी खाद, उसमें भी हम किसानों को जो हमारी परंपरागत जो गो आधारित खेती और गो आधारित जो हमारे प्रोडक्ट है उनके इस्तेमाल के लिए हमने प्रेरणा की। अभियान बहुत पॉपुलर हुए, केंद्र सरकार ने इसको सराहा। मेरा मानना है वर्मा साहब कि मिट्टी एक बैंक खाते की तरह है, इसमें खाली पोषक तत्व हमेशा आप निकाल नहीं सकते, इसमें आपको पोषक तत्व डालने रहेंगे निरंतर ताकि ये हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे। और धरती माता प्रकृति बड़ी दयालु है, देखो एक बीज अनार का लगाते हैं तो कितने करोड़ों अरबों बीज तैयार होते हैं एक बीज से, तो प्रकृति में कहीं कमी नहीं है, प्रकृति बहुत दयालु है, हमें उसके साथ चलना है, उसके अनुरूप प्रकृति का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर रासायनिक खेती करेंगे तो हमारी प्रकृति माता को हम बांझ करेंगे, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म करेंगे
0: जी। गोयल साहब, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे किसान, अगर हम राजस्थान की बात करें तो बहुत छोटी जोत के भी किसान हैं, बहुत कम रकबे के अंदर वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहीं जैविक खेती का जब से इतना नाम आगे आया है, जो स्टार्टअप्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अब आगे जा करके आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी तरफ से कुछ करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। यहाँ अगर हम उन छोटे किसानों की बात करें तो कॉरपोरेट्स के और स्टार्टअप्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने से क्या उन छोटी जोत के किसानों को कोई नुकसान होने की संभावना है?
2: नुकसान नहीं होगा, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, मैं बताता हूँ कैसे। अभी हमारे कृषि विभाग ने, मैंने 38 जो स्टार्टअप है, एनजीओ है, एफपीओ है, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे एमओयू किया, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। उन एफपीओज के माध्यम से हम सारे किसानों से जुड़ रहे हैं और उनमें कई तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तो संस्थान है वो 15 जो प्राकृतिक खेती करने वाले समूह हैं उनका है, तो एफपीओ बन रहे हैं। एफपीओ में 200 लोग जो कह रहे हैं ना आप छोटे, वो उन एफपीओ के माध्यम से जुड़ रहे हैं, एफपीओस को कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एग्री स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनको फंडिंग की है, हमारे जो उनको जो एक मंच प्रदान कर रहे हैं राज्य सरकार, एग्री स्टार्टअप को हम 35 पुरस्कार देते हैं, 5 पुरस्कार हैं 25-25 लाख के पुरस्कार कहें या सहायता राशि कह सकते हैं उसको, सहायता राशि 25-25 लाख की 5 है, और जो 5-5 लाख के हैं, 6-6 लाख के हैं, तो कुल मिला के 35-35 जो हमारा एक नियम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो 35 पुरस्कार दे रहा है, जोबनेर यूनिवर्सिटी 35 पुरस्कार और ये जो सहायता राशि ये दे रहे हैं, तो पूरा किसान इससे जुड़ते हैं, उनको लाभ हो रहा है किसानों के इससे जुड़ के और हो रहा है। और किसान जैसा कि बहन संतोष बता रही थी कि इससे जुड़ रहे हैं, वो जो जो हॉर्टिकल्चर है, जो फसलों के पैटर्न चेंज कर रहे हैं।
0: जी गोयल साहब, हम अपनी बातचीत को, इस बातचीत को फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक श्रोता एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। हेलो
4: जी।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं जगदीश के साथ पारिक बोल रहा हूँ सर।
0: जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं या क्या कहना?
4: मैं अजीतगढ़ का किसान हूँ और 11 मार्च 2019 को मुझे जैविक खेती में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
2: अरे वाह साहब, हम तो धन्य हो गए, फिर तो आपसे मिलना पड़ेगा, आप बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
4: और सर मैं जैविक खेती कर रहा हूँ 1957 से, 8 वर्ष की उम्र से मैंने मामा जी के साथ सीखा। 1970 से आज तक किसी प्रकार का रसायन और खाद का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने खेत पर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि बना करके और खेती की है। और उसमें वेट बढ़ाने का मेरा था कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वजनी हो वो जैविक प्रणाली से अपने हिंदुस्तान का हो, तो इसको बढ़ाने के लिए मैंने हर सब्जी का वेट और लेंथ बढ़ाने की कोशिश की है जैविक से। लोगों की ये धारणा थी कि जैविक से उत्पाद कम होता है, लेकिन मेरी ये धारणा है कि रसायन से 2.5 गुना जैविक में ज्यादा उत्पाद होता है।
2: आज आपने दिन बना दिया मेरा ये बात करके, मुझे और ज्यादा हौसला हो गया। परिसर आप कहाँ रहते हैं?
4: 25 किलो 150 ग्राम का गोभी का फूल बनाया है, 1 मीटर लंबा बैंगन बनाया है और 12 किलो की पत्ता गोभी बनाई है, 86 किलो का कद्दू बनाया है, 6 फीट लंबी लौकी बनाई है और 7 फीट लंबी तुरई बनाई है। सभी जो सब्जियां हैं उनका वेट बढ़ाया है, सब ऑर्गेनिक है।
2: मुझे आज आकाशवाणी से ऐसे ऐसे बढ़िया लोगों से वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं धन्य हो गया। परीक साहब आप कहाँ रहते हैं?
4: अजीतगढ़ है सर, ये जयपुर के पास में ही अजीतगढ़।
2: तो फिर तो पधारो आप, हमारे एक दिन मिलने आओ हमसे और हमें नंबर भी दीजिएगा।
4: मैंने पुस्तक लिखी है जी, परंपरागत जैविक कृषि, उसकी एक प्रति आपको भेंट करने के लिए मैं 2-3 दिन में ही आपके पास उपस्थित होगा सर।
2: बहुत बढ़िया, स्वागत आपका, धन्यवाद।
4: यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल सर पानी की बिल्कुल कमी है
2: जी जी,
4: तो उसके लिए जो बरसात का पानी बह करके जाता है उस पानी को रोक करके रिचार्ज करके मैंने 7.5 HP की इलेक्ट्रिक मोटर और 5 HP की ये मोटर लगा करके और 20-25 बीघा में सिंचाई करता हूँ साल भर।
2: बहुत बढ़िया सर।
4: और पशुपालन, इसके अलावा पशुपालन सबसे मुख्य है कृषि के लिए, जो पशुपालन करता हूँ।
2: गौ माता पालेंगे तो माता तो सबकी, माता का मतलब ये होता है कि जो सब कुछ देती है, भगवान हर जगह नहीं हो सकता इसलिए माता बनाई उसने, और गौ माता को हमने माता का इसलिए दर्जा दिया है कि वो हमारा संपूर्ण पालन पोषण करती है और उनके जो गोबर और मूत्र और उससे प्रोडक्ट है वो अमृत तुल्य है, सोने। अभी तो जो रिसर्चेज हो रही है नई तो बहुत अद्भुत रिसर्चेज हो रही है उस
4: पर। इस पर सर 2 लाइन बोल दूं मैं?
2: बिल्कुल बोलो सर।
4: दांतों तले तृण दबा कर दीन गायें कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुज है क्या तुमको यही सही, माँ की तरह हमने तुम्हें है दूध पीने को दिया, देकर कसाई के यहाँ तुमने हमारा वध किया, जारी रहा यदि ये क्रम यूं ही हमारे नाश का, तो समझो अस्त है सूरज भारत भाग्य के आकाश का। भारत को बचाना है, देश को बचाना है, देश के नागरिकों को बचाना है, पशु पक्षियों को जानवरों को बचाना है तो सबसे पहले कृषि के साथ गौ माता का गोपालन करना जरूरी।
2: बिल्कुल आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिल

0: चाहता है, उसमें कोई काम करना चाहता है, गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या उन्हें सुविधाएं और मिल सकती हैं?
1: सब एक तो हमने हमारे कृषि विभाग में मुख्यालय में फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, इनक्यूबेशन सेंटर बनाया है, तो वहाँ पे सारे जो स्टार्टअप है उनको रेगुलर ट्रेनिंग होती है बच्चों को, उनको बताते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि साहब इस तरह से आप स्टार्टअप बनाइए, ये सुविधाएं हैं जो मैंने आपको आग्रह किया कि जॉबनर यूनिवर्सिटी और हमारा जो नियाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो भी हमारा इसमें सहयोग कर रहा है। तो स्टार्टअप रजिस्टर कराएं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको फंडिंग करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको बता सकते हैं कि आप कहां कहां किस किस फील्ड में काम कर सकते हो। इवन हम उनको जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स है उनमें शामिल कर रहे हैं। हमने कुछ स्टार्टअप को हमारे ऑन रोल भी किया है, तो कोई स्टार्टअप है और उनके पास अच्छा आइडिया है तो हमसे संपर्क करें, हम हर तरीके की उनको सहायता करेंगे, उनके मार्केटिंग, पैकेजिंग, उनका जो इससे रिलेटेड जो फील्ड है कहां कहां उनके प्रोडक्ट बिक सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में युवा हमारे इससे जुड़ रहे हैं।
0: जी गोयल साहब, एक लिसनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं दिलीप सिंह गहलोत बोल रहा हूँ सर, जैसलमेर जिले से।
1: नमस्कार गहलोत सर।
2: और हाँ नमस्कार सर, और आत्मा से राज्य स्तरीय पुरस्कार से अवार्ड हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
2: 15-16 में, और सर अभी 2026 में ICR ने भी मेरे को दिल्ली में अवार्ड दिया है।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं
2: सर। ये तो मैं ये जैविक खेती, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है आपकी सर, जैविक खेती मैं 2014 से कर रहा हूँ।
1: जी जी।
2: और राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जयपुर से मैं अटैच हूँ।
1: जी जी।
2: 2014 से। तो इसमें सर मेरा ये मानना है कि किसान इसमें आगे बहुत कम बढ़ पाए हैं जैविक खेती के अंदर। तो एक तो सर पहले इनकी फीस, एजेंसियों की फीस बहुत ज्यादा थी।
1: जी जी।
2: 2014 से जब मैंने फीस भरनी शुरू की तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमने काफी बार ये क्वेश्चन उठाया तो उन्होंने कम जरूर की।
1: अभी 500 रुपए कर दिए हमने, उसको
2: हाँ,
1: भी आप कहोगे तो और भी कम कर देंगे। 500 रुपए कर दिया, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी हमने इजी कर दिया है। इसमें कोई आप जुड़े हुए हैं और भी कोई सुझाव हो तो बताइएगा, हमने जिला लेवल पे भी इसको लेके गए हैं हम।
2: अच्छा, वहां और भी मेरा एक ये सुझाव है सर कि जिस तरह से किसान को यूरिया उपलब्ध कराई जाती है खेतों में डालने के लिए,
1: जी जी,
2: उसी तरह से एक जैविक कंपोनेंट यूरिया की तरह निकाला जाए, जो
1: बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है,
2: अवेलेबल कराई जाए ताकि वो किसानों तक पहुंचाए।
1: वैसे तो हम कर रहे हैं इसमें, हमने कुछ सेंटर, लेकिन आपने जिस रोचक ढंग से रखा है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं सर एक बीच में गहलोत साहब लाइन पे है, मैं छोटा सा बताऊं आपको ये कि आपको पता है गहलोत साहब की सरकार यूरिया पे कितनी सब्सिडी देती है? बहुत कम किसानों को पता है। आपको पता है?
2: बहुत कम पता है। नहीं सर, मुझे नहीं पता।
1: आपको 267 रुपए का मिलता है, 267 रुपीज का।
0: जी,
2: जी।
1: आज की डेट में सरकार इस पे 2700 रुपए की सब्सिडी दे रही है एक कट्टे पे। एक किसानों को पता नहीं है, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, इसको सस्ता मान के खेत में ज्यादा डालते हैं, ज्यादा नुकसान करते हैं, संतुलित उपयोग नहीं हो रहा। उनको लगता है कि साहब ज्यादा यूरिया डालने से, ज्यादा डीएपी डालने से हमारा उत्पादन ज्यादा होगा, नहीं ये उल्टा नुकसान करता है। है क्या नाइट्रोजन और इनके रिलेटेड
2: उत्पादन ज्यादा नहीं होगा यूरिया डालने से।
1: हाँ, तो ये एक आप लोगों में कम करिए, प्रदेश में अभी कहीं कोई कमी नहीं है यूरिया डीएपी की। एक हंगामा कर रहे हैं लोग के सब कम है, कमी है, कमी, अरे कहीं कमी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि कम डालो, आप संतुलित उपयोग करो। और इतना जो सरकार आपके साथ खड़ी है, हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे जैविक है चाहे और है, दूसरे भी हम उपलब्ध कराएंगे।
0: जी,
2: मेरा कहना यही है सर कि जैसे अभी मार्केट में आपने 266 बताया, लेकिन वो 300 के आसपास
1: वो लगता है। देखिए, वो कई बार FOR वो लग के आ जाती है हर जगह, क्योंकि उसके चार्जेस भी रहते हैं और FOR है।
2: मेरा
1: है।
2: हाँ, मेरा आपसे ये निवेदन है सर कि सरकार ही सब कुछ कर सकती है, किसान तो उसको फॉलो कर सकता है जो आप करोगे, कि जो 300 रुपए के आसपास ये यूरिया का बैग मिल रहा है, इसी तरह से सर 50 किलो की पैकिंग में 300 के जगह आप भले 400 रुपए भी उसकी कॉस्ट होगी तो भी वो किसान इजीली देगा। तो यूरिया का ऐसा एक कंपोनेंट भारत सरकार
1: बहुत ही अच्छा सुझाव है, मैं इस पे काम करूंगा, आप मिलिएगा मेरे से आके, हम इस पे दोनों एक संयुक्त प्रस्ताव बना के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करेंगे, और बहुत संवेदनशील है ऐसी चीजों के प्रति, और हम इस पे देंगे तो धीरे धीरे इसका उपयोग कम होगा और उधर हो जाएगा जैव उर्वरक।

0: है हमारा ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा की एक और मैं बता रहा हूं आपको कि
1: हाँ जी
0: ट्राइकोडर्मा का हम अब निजी क्षेत्र के साथ जाके प्रोडक्शन करने वाले हैं, इतनी डिमांड है, हम यूनिवर्सिटीज इसको कर नहीं पा रही है, बहुत
1: हाँ
0: वेल
1: बिल्कुल सर
0: स्टेब्लिश है, तो इस तरह की चीजें हम करेंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने, धन्यवाद
1: बिल्कुल सर
0: आपका।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद सर।
2: गोयल साहब, ये गहलोत साहब से हमारी बात हुई, बहुत ही फ्रूटफुल बात थी और बहुत जो उन्होंने सुझाव दिए काफी अच्छे थे। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं,
0: बिल्कुल
2: उसके
0: सर
2: बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी।

0: 101.2 FM जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं जैविक खेती नए आयाम। और आज हमारे साथ में एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल जी उपस्थित हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में गोयल साहब एक श्रोता जुड़े हुए हैं। ये हमारा आज की इस प्रोग्राम का आखिरी फोन कॉल होगा, हम उनसे बातचीत करते हैं।
1: जी,
0: और जी हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार जी सर, महादेव प्रसाद यादव बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: नमस्कार यादव सर, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया बढ़िया सर, बकवास।
1: हाँ जी बताएं सर।
2: जी सर,
1: तो कहाँ पे हैं, क्या करते हैं यादव साहब?
2: सर मैं यहाँ पे पावटा कोटपुतली दिल्ली रोड के ऊपर जमीनें जो पड़ी है उनको लीज पे लेता हूँ, 8 साल 6 साल 7 साल के लिए, और फिर उनको ठीक ठाक करके। और
1: बिल्कुल बिल्कुल आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत बड़ा। हाँ जी बताएं, विवरण बताएं, डिटेल।
2: सर मैं लगभग 2015 से कर रहा हूँ, 400 एकड़ के अंदर।
1: अच्छा, सारी प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं?
2: हाँ सर, पूरा मतलब गोबर खाद वगैरह, ये आपका जीवामृत बढ़ाना, पैसोलोमाइसिन, ट्राइकोडर्मा, छाछ वाछ इकट्ठी करना, ये करना, ये लगभग सब कंप्लीट करता हूँ।
1: तो कितना प्रोडक्शन है आपका, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को?
2: सर मैं तो क्या ज्यादा इस टाइम में फूल गोभी करता हूँ, आगे चिल्ली और कैप्सिकम, शिमला मिर्ची और मिर्ची और तरबूज वगैरह और खरबूजे।
1: अरे वाह,
2: तो ये लगभग मैं 8-10 प्रकार के अलग अलग कलर के तरबूज लगाता हूँ, अंदर से पीले, बाहर से पीले वगैरह, अलग अलग जो आते
1: हैं। बहुत प्रोग्रेसिव किसान, तो आप आइएगा, डिटेल बताइएगा, हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे सब किसानों को। और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर इतने लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है आपका। ये मिथ है क्या कि प्रोडक्शन कम हो जाता है जैविक खेती करने से?
2: नहीं सर, ये क्या है कि अभी कल मेरे पास एक किसी कंपनी वाले का फोन आ रहा था, चिल्ली वाले का, तो उसका फोन ये आ रहा था कि सर हमारी वायरस टॉलरेंट वैरायटी है। तो मैंने उसको ये कहा सर 2015 से लेकर आज तक हमने वायरस देखा ही नहीं।
1: अच्छा
0: जी,
2: क्योंकि हम क्या है, अभी मेरे पास साल भर तक भी पुरानी छाछ पड़ी है, छाछ के अंदर थोड़ा तांबा, थोड़ा लोया वगैरह डाल के, गुड़ मिला के, और हर 15 दिन में एक स्प्रे करते हैं, वायरस अगर आ भी गया ना तो भी खत्म हो जाता है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: हाँ
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए साहब, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे काम करते रहें।
1: वर्मा साहब एक चीज और इनसे याद बात करके मुझे लगा
0: जी।
1: अभी हम एक हर किसान को उसके घर में स्वस्थ रहने जितनी चीजें वहां उगनी चाहिए रहनी चाहिए, इसलिए कृषि विभाग एक नवाचार कर रहा है। बहुत जल्दी हम 10 लाख किसानों को 15 किस्म के बीज उपलब्ध कराने वाले, जिसमें 5 औषधीय, 5 सब्जियों के, 5 फलों के, जिसमें अमरूद, आंवला, सहजन, तुलसी, नीम, तुरई, घिया, खीरा, काकड़िया, बेलपत्र, कचनार, संबल, गुलमेर, इस पे काम कर रहे हैं, ये उपलब्ध कराएंगे
0: जी
1: बहुत जल्दी।
0: गोयल साहब आपसे बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चला, और अब हम ये बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा सुप्रियो बनर्जी का, प्रकाश बाबू शर्मा का, प्रसारण सहयोग रहा राजेंद्र सिंह दारा का, प्रस्तुतकर्ता बीएस यादव, संयोजन महेंद्र कुमार मीणा, और मैं आपका साथी जितेंद्र वर्मा। और आज हमारे साथ में उपस्थित थे एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल, और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ।
1: थैंक यू सर।

0: अति आभार आपका, मुझे इतने सारे किसानों से आपने जोड़ा, इतना सारा मुझे सीखने करने का मिला अवसर, थैंक यू।
1: गोयल साहब आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और विषय पर बातचीत के साथ, आपसे चाहते हैं इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार आकाशवाणी।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जयपुर से कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल के साथ जैविक खेती के नए आयाम विषय पर सजीव फोन कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। दिन के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई से।
4: देशों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
5: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
4: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

0: Aditya, ya, ya, ya, ya.
1: Aditya, sun, sun, sun, sun.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: यह आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

फिल्म बहू रानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत

0: मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: गई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
3: ये आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे। फिल्म का नाम था साथ साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की प्रसारण आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के कार्यक्रमों में शिरकत की। रक्षा मंत्री ने देशी विदेशी वायुसेनाओं के जवानों से मुलाकात की और आधुनिक लड़ाकू विमानों का हवाई प्रदर्शन देखा। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी और विदेशी लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस युद्धाभ्यास में विभिन्न देशों की वायुसेनाएं अपनी परिचालन क्षमता, आधुनिक तकनीक और सैन्य समन्वय का प्रदर्शन कर रही हैं। इसका उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल, सामरिक सहयोग और परिचालन अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बैठाकर विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर जा रहे सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। ये प्रस्तावित प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए किया जा रहा है। पत्र में मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों से बिना अनुमति के दिल्ली में घुसने की सीजेपी समर्थकों की कथित कोशिशों को देखते हुए तत्काल एहतियाती कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि इससे शांति और व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खुफिया एजेंसियों, सीमा और पारगमन अधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस के बीच लगातार और खुफिया जानकारी साझा करने का भी आह्वान किया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के 13 जिलों में कपास उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कपास उत्पादकता मिशन चलाएगी। 5 वर्ष के इस मिशन पर 5,659 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये मिशन 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक चलेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इसके तहत किसानों के खेतों पर प्रदर्शनी आयोजित कर उन्हें आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। वैज्ञानिकों की टीम मिशन की नियमित निगरानी करेगी। योजना में केंद्र की 60 और राज्य सरकार की 40% भागीदारी होगी। इसका उद्देश्य कपास की गुणवत्ता सुधारने, किसानों की आय बढ़ाने और खेत से बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। प्रदेश में आज तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और जयपुर में न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों, राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता आयोगों में ये अदालतें आयोजित की जा रही हैं। इस लोक अदालत के लिए 8,38,000 से अधिक प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झुंझुनू में नशा मुक्ति रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। वहीं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों में दर्द प्रबंधन को लेकर संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज ही मानसिक स्वास्थ्य माह भी संपन्न हो रहा है। 10 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में रैलियों तथा जागरूकता सत्रों के जरिए लोगों को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग किया गया। डीग महोत्सव 2026 का आज आगाज हुआ। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। शोभा यात्रा में राजस्थानी कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। मेला मैदान में आज दिन भर कबड्डी, मूंछ, रस्साकशी और राधा कृष्ण पोशाक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। शाम को डीग महल में रंगीन फव्वारों और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। इसके बाद सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव का उद्देश्य डीग की ऐतिहासिक धरोहर, लोक परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई हैं, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हो या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, फरवरी मार्च तक रुकते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वहीं एक श्रोता

हैं कि पिंजरे में पंछी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दें तो वो आसमान को छू लेता है। शायद पिंजरे में बंद पंछी हमें यही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे? कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे? जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है? अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है? बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। आई सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज, और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

का आसमां तो बढ़कर राही तो रुक ना सकेगा, दुनिया के रास्तों पे चलकर दिल मेरा एक आज का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर।

श्रोता लिख रही हैं कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है और ये गीत आजादी उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही है कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए, जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है, लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है, लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है। फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर बहुत सुंदर लिखा है अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे, इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों क्यों जाना चाहेंगे वहाँ। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश हैं और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूँ, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूँ। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गाँव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछाकर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं। अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरदराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि, झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियाँ, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीले सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना। आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को।

ये आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6ठी क्लास में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए। अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया। उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊं मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की भारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है लेकिन शायद मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। हुँ?

आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा, तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की है भाई। बहुत ही मजा आता है जब हम तोता पालते हैं या हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं उन्हें ढूंढने के कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और

0: यहाँ कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं, पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली न मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूं। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूं, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है, परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र किशन के बोल हैं, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही हैं, फिल्म का नाम है बारिश।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं न कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा, कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। मैं एक शोधा लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं, तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है, पंछी बनी उड़ती फिरू, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूं। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं, तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में, आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियाएं आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को, अच्छा, चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ, इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है, तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं लेकिन शायद जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है? सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं तो। हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ा

समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, एक श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।

पहुंच चुकी है जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

0: सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
1: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
0: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु

बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

0: किया बाबू।
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवी।

0: लाया।
1: चिट्ठी, खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिया के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े

0: बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इस

0: को देख नहीं पा रहे और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर,
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टि

0: कोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था कैफी, कैफे भोपाली का लिखा गाना, संगीतकार गुलाम मोहम्मद और फिल्म थी पाकीज़ा।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: दूसरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सभी श्रोताओं ने संतोष बिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधु, महावीर संधु और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना, किशोर कुमार की आवाज़ है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना, रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

राहुल देवबर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ, ये उल्कर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले, अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना ना ना ना ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 बजे उठते रहे हैं, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
2: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
1: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
2: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी से
1: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या ऐन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
2: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
1: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थी कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
3: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे है, लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तबीयत ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
4: नहीं नहीं,
3: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है।
4: क्या बताऊं?
3: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
4: नहीं।
3: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
4: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
3: क्या?
4: ट्रांसफर।
3: ट्रांसफर आपकी?
4: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे
3: मिली। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया।
4: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
3: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
4: आगरा।
5: हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन? पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
6: हाय, कौन तो बहन?
5: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
6: दिल्ली में था कि बाहर?
3: नहीं बहन, ये बात नहीं, आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
6: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
5: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
3: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
6: बहन फिर हुआ क्या?
3: अरे किस्मत फूट गई हमारी, तो किस्मत फूट।
5: भाई साहब की नौकरी?
3: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
5: अनर्थ?
3: अनर्थ, आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
6: हाय राम,
5: करो बहन धीरज रखो।
4: लाजवंती हौसला रखो।
3: तुझे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
6: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
3: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
6: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा, मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
3: ठीक तो कहती हो बहन।
5: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई दूँ।
3: नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
5: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
6: हाँ हाँ, हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
5: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
4: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
3: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछिए तो।
4: ना जाने कौन है।
3: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
4: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं, फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
3: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस जन्म का बैर निकाला है हमारे साथ?
4: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
7: अम्मा,

0: लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
1: पिताजी आप
2: कृष्ण तुम
1: इस वक्त यहाँ?
2: इस वक्त यहाँ?
1: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आप आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
3: क्या बताऊं बेटे,
1: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
2: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
1: ओह, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
2: किसने, किस पर?
1: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
2: क्या बक रहे हो तुम? कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
1: ये सब धोखा है। आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
2: बेशक।
1: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
2: रजा, रजा।
1: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है। जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खिदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे? इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
4: बदतमीज,
2: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो, ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
1: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
2: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
1: वो खाना जो 25 तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
2: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
1: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका हो, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। यह ट्रांसफर उन्हीं विधि ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
2: बेवकूफ, पागल, गधे, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा।
5: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
1: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
2: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
5: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी, कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
1: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
2: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
5: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
2: करना क्या है, क्या हो सकता है? ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
1: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
5: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
2: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
1: कल से स्ट्राइक?
2: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
6: उसी रोज यानी 17 की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
2: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
6: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं,

0: शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए ऊर्जा की आवाज सुनते ही
1: मामी मामी पिताजी आप बाप रे
2: कौन
1: मैं कोई नहीं
2: कौन लाजवंती अरे उषा ही है क्या
1: उषा हाँ नहीं
2: तो कौन घुसा है अभी घर में
1: उषा
2: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे
1: ओ, ओ, किसे कोस रहे हैं
2: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है
1: ओ, ओ, पूरी बात तो सुन लिया करो मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी उषा तो कभी की आई हुई है
2: बुलाओ उसे
1: अरे इधर क्या आएगी बेचारी घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है
3: ओह हे भगवान मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता
2: विनय लौट आया कॉलेज से
1: हाँ वो भी बहुत परेशान था अपने किसी दोस्त को मिलने गया था आता ही होगा
2: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है
1: आप सूरज ढलने की बात करते हो हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है
3: हौसला रखो लाजवंती कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा अवश्य निकलेगा
2: विनय
4: जी पिताजी
2: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए
4: इफ यू डोंट माइंड पिता आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ
2: कैसा सवाल
4: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती
2: विनय
4: आपकी ट्रांसफर होने वाली है इसकी खबर तक न मिली आपको
2: खबर आज ही आई है
4: आज ऑर्डर आए हैं आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी
2: तुम्हारा मतलब क्या है
4: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे
2: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं ये कोई मेरे हाथ की बात है
4: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी हमारे एजुकेशन हमारे करियर का क्या बनेगा
2: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ
4: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी बंबई लंदन न्यूयॉर्क कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है सब कहेंगे आगरे के पागल खाने में जा रहे हैं
2: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का
4: डोंट माइंड पिताजी एक बात मैं साफ बता देता हूं मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता
2: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते
4: कैसे जा सकता हूं यहां मेरा करियर है एक अपना सोशल सर्कल है
2: तुम्हारा सोशल सर्कल
4: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क नहीं कर सकता अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए मैं यहां हॉस्टल में रह लूंगा
2: क्या तू यहां हॉस्टल में रह लेगा और खर्चा कौन देगा
4: ऑफ कोर्स आपको देना होगा
2: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूं
4: तो ना सही मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा
2: और मेरे इस घर बार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे
4: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते आगरे चले जाएंगे फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे वहां से गाजियाबाद कर देंगे वहां से धनबाद और धनबाद से फिरोजाबाद माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी
2: मेरे साथ अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है
3: हे भगवान मैं ये क्या सुन रहा हूं मेरी औलाद मुझे इस तरह मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता दूर हो जा मेरी नजरों से
1: विनय अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए
4: नहीं अम्मा मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा मैं क्या बताऊं मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता मैं यहां से नहीं जाऊंगा
2: निकल जा मेरे घर से चला जा यहां से जहां तुझे रहना रह ले बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहां रह सकता है रह ले
1: ओहो आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है हाय राम किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बाहर उजड़ जाएगा
4: आई एम सॉरी पिताजी ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया मुझे माफ कर दीजिए पिताजी
3: तुम लोग क्या समझते हो बेटे मैं क्या कम परेशान हूं पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं
4: लेकिन पिताजी खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा कुछ कीजिए ना
3: हाँ कर रहा हूं कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा
0: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में
5: भाई साहब आजी भाई साहब जी जी चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए कैश जमा करवाना है
6: लंच के बाद आना
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
6: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था
5: लेकिन जनाब वक्त तो अभी भी है
6: कहाँ है वक्त 11 बज रहे हैं स्टाफ की मीटिंग है
7: अरे ललित।

0: आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
1: नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है।
2: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
3: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाव की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
0: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
2: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
4: इतने चाय?
2: यही चार पांच, और चार पांच प्लेट बढ़ेगी।
4: और पैसे?
1: ये ले, मैं देता
0: हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू,
1: ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
0: नहीं, नहीं, नहीं,
3: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
1: ले रामलाल, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
2: मेरी राय में तो बड़े बाबू सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए, क्यों भाई?
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: मगर वो क्या कर सकता है?
3: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा, क्यों भाइयों?
0: सही बात,
3: सही है,
2: सही बात।
1: अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
2: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
1: हाँ सो तो है,
0: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर, क्यों भाई?
3: बिल्कुल
2: सही बात,
1: बिल्कुल सही,
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज ही मिल लीजिए,
1: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचिए उसके पास, क्यों भाई?
5: बिल्कुल ठीक बात है।
1: तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
6: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
7: मे आई कम इन सर?
8: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया
1: सर? आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
8: हाँ हाँ बोलो
1: सर। वो बात ये थी कि
9: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब,
1: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
8: हाँ याद है,
1: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
8: याद है बरोबर,
1: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
8: बरोबर,
1: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
8: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
1: आपको सब कुछ याद है?
8: Of course.
1: अगर सचमुच अपने सारे कैरियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
8: बोलो बोलो, क्या काम है?
1: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
8: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
1: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
8: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
1: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं,
8: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
1: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर बच्चे तबाह हो जाएंगे सर। मैं
8: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
1: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
8: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
1: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
8: क्यों,
1: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे, और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ।
8: अच्छा।
1: जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
8: ओ आई सी,
1: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए, अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर?
8: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है, अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
1: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर, फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
8: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
1: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड।
8: अच्छा, कभी देखा नहीं।

0: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
1: ओ आई सी।
0: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
1: कहाँ?
0: वो घर के आंगन में सर।
1: लोधी रोड के क्वार्टर में?
0: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
1: ओ वो तो 10-12 मील होगा।
0: यस सर।
1: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
0: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
1: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
0: सर है तो दिल्ली ना।
1: यस यू आर राइट।
0: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
1: हम रुकवा सकते हैं?
0: यस सर आप रुकवा सकते हैं।
1: ओके हम रुकवा देंगे।
0: थैंक यू सर।
1: नो नो नो नो, व्हाई थैंक मी, इट इज माय ड्यूटी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मैं अब चलता हूँ।
1: ओके
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: मिस्टर शर्मा।
0: यस सर।
1: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
0: बस सर आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
1: इज दैट ऑल?
0: यस सर।
1: ओके हम लिख देंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ सर।
1: अच्छा बट लिसन।
0: यस सर।
1: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
0: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीज नहीं किया जा सकता।
1: हाँ हाँ ये ठीक है।
0: थैंक यू सर।
1: अच्छा अच्छा
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: पर मिस्टर शर्मा।
0: यस सर।
1: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं, भाई स्टाफ स्ट्रेंथ वही रहेगी ना।
0: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
1: सुनो नालगढ़ी मेंशन कर दें।
0: नो नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
1: मिस्टर शर्मा।
0: यस सर।
1: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
0: वो तो सर।
1: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है, जैसे ऊपर कॉर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
0: ओके सर।
1: ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सर,
1: ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू।
2: प्लास्टिक की घास। श्रोताओं आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक वीना नाथ। आपको बता दें इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
3: एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्ट्रेस का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है, क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
3: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
4: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
3: जी।
4: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
3: जी।
4: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में। वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी, मणि रत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, VCR पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ, ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना, ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके, ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तू अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था।
3: अच्छा।
4: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा। और फिर चलता रहा 1.5 साल, बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है। तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ, इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
3: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
4: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
3: जी,
4: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
3: जी,
4: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म में, इंडस्ट्री में।
3: हाँ।
4: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ। और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था, शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था। तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया, हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए। वहां से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला, मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक में भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की। तो फिर मैंने एक डेढ़ साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
5: अच्छा।
4: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, डेढ़ साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है। और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने पांच करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
5: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप?
4: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब डीवीडी हुआ करती थी, तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी बंबई के एक इलाका है बांद्रा, और वहां का जो ओनर था डीवीडी लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था। तो

0: मैंने बोला कि यार छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहाँ और वो आए और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहाँ से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते
1: जी
0: हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके। वहाँ से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना
0: हाँ
1: ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया
0: हाँ
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से
0: नहीं
1: शुरुआ या
0: मतलब
1: कैसा शुरुआ असिस्टेंट डायरेक्टर का?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता,
1: जी
0: जो बड़े डायरेक्टर है, रेड 1, रेड 2, आमिर, नो वन किल जैसे
1: जी
0: करके, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख, कि तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5 6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा। ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है,
1: जी
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4 5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था,
1: जी
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूं। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है।
1: जी
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा, देर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
1: जी
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है,
1: जी
0: जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10 15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो वैसे हम 8 10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते हैं, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4 5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8 10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें जो हमें जो बेस्ट 3 4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो। उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और
1: जी
0: लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3 4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट
0: हाँ
1: बैठेगा और देन आप आगे लेके जाते हैं।
0: या
1: गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी
1: चलिए
0: बहुत पसंद है।
1: जी सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकेंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको वो ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है?
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाए। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन, एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: हाँ, तो ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
0: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
1: हाँ,
0: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट।

0: से कुछ टिपिकल किरदार्स उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
1: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट. अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी. और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
0: जी
1: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी. और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट
0: हाँ
1: 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए. तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके. बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड. फाइनली वी वेंट विथ कल्की.
0: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के,
1: हाँ
0: हम जैसा
1: हाँ
0: कह रहे थे
1: हाँ
0: ऐसा लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी तरह
1: हाँ
0: से निभा सकती हैं।
1: हाँ
0: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन लें, क्योंकि इतनी
1: बिल्कुल.
0: सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक.
0: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।
1: जल

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम.
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है.
0: जी
1: Nobody is indispensable. Like, आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के.
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था. हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए. वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो. लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहां. आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया.
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था. और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे. बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे. काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो.
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: और
0: और
1: टाइम बहुत कम था.
0: जी अगर सेक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है.
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था.
0: जी पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं कुछ फर्क नहीं होता है. ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं. फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो.
0: जी
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं. जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है. कर पाते हैं इवेंचुअली बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है. बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है.
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं.
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है.
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में फिट
1: कोशिश करता
0: बैठेगा?
1: हूं कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं. क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है.
0: हाँ
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो बिगनिंग में 1-2 बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो. बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने.
0: जी
1: तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया.
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी
1: हाँ,
0: और
1: और
0: उसके
1: फिर
0: बाद?
1: एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में.
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब
1: हाँ,
0: चीजें
1: ताकि
0: चलें.
1: जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले.
0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है.
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं. कैसे तेरी खुद मर्जी.

0: हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं। तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं। तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं, जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं,
0: जी
1: तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो एक 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस
1: हाँ
0: तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रांगर एक्टर ऑप्शन है, तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर।
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
1: हाँ,
0: वो,
1: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, ये सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
3: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
2: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे।
3: हाँ,
2: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
3: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
2: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए। और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
3: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
2: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
3: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
2: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
3: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूं, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊं कोशिश करता हूं जितना हो सका थिएटर देखूं, शॉर्ट फिल्म्स देखूं। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो, वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूं कि एक्टर्स को, कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
1: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उनमें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें, उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है। मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का, रहना तू।
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद पर।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90s सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो
0: जी
1: एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इंपॉर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को, NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए,
0: जी
1: जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001 दो तीन से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब
1: तो
0: अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी
1: हाँ, वो
0: एक
1: पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूं कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ
0: जी
1: ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूं जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए।
0: अपने रील्स या ऐसे अपना
1: हाँ,
0: काम आगे
1: रील्स,
0: बढ़ाते
1: ह्यूमर,
0: रहें।
1: कुछ
0: जी
1: भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता, जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए। कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कांटेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा, और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली। तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में, बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं, और
1: बहुत इजी
0: उन
1: हो जाता है स्टूडियो में,
0: हाँ
1: बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
0: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं उस क्राफ्ट से।
1: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
0: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग,

0: तो फिर बहुत से लोग हैं, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
1: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए वो। अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है।
0: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है, उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
1: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है,
0: जी
1: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं।
0: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर
1: हाँ,
0: सकते हैं।
1: चूज करते, बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
0: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो
1: हाँ,
0: उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी
1: वो
0: भी
1: नहीं,
0: ऐसा नहीं किया?
1: हम आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों।
0: अपने किरदार को पकड़ने के लिए
1: हाँ,
0: अच्छे।
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
3: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर्स 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी। अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
0: जी
1: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, ऐसे रॉक लो मत या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है

0: तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद के लिए
0: पहले
1: सोच?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा, फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
0: ये मैंने
1: डायरेक्शन तो
0: वो,
1: आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी,
1: अच्छा,
0: तो घनचक्कर थी, 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं, और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली,
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: भी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्टर्स के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए, दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, निजे सुनिए कार्यक्रम युवा वाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को अपने दोस्त अहमद अली का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त लेकर आपके लिए ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, बात करते हैं डाक सेवा की। जब हम आज से कुछ वर्षों पहले जब संचार का माध्यम डाक हुआ करता था, यह मुख्य संचार का माध्यम था दोस्तों, जिसमें हम अपनी चिट्ठियों को, पत्रों को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को भेजा करते थे और उनसे भी जवाब मिला करता था। तब ये हाथ से लिखे जाते थे, पोस्ट कार्ड होते थे, अंतर्देशीय पत्र होते थे और उसके साथ दूसरे काम भी भारतीय डाक द्वारा किए जाते थे, जो समय के साथ ईमेल्स वगैरह और सोशल मीडिया के आने से थोड़ा उनमें कमी आ गई है। फिर भी डाक विभाग आज भी डाक सेवा को निरंतर चला रहा है। और दोस्तों, जैसे 10 अक्टूबर 2026 आज है और 10 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस, इसीलिए मैंने डाक सेवा के बारे में बात की। तो आज है राष्ट्रीय डाक दिवस। दोस्तों, ये दिवस डाक टिकट के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए और डाक की महत्ता को पहचानने के लिए मनाया जाता है और ये उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो डाक टिकट का संग्रह करते हैं। इस दौरान तमाम डाकघरों में स्कूल बच्चों के लिए डाक टिकट प्रदर्शनी और प्रश्नोत्तरी, ढाई अक्षर पत्र लेखन और फिलाटेली ऑन द रनवे जैसी विशेष गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। और डाक सेवा जो हमारे लिए पुराने ज़माने में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए मुख्य साधन हुआ करती थी, उनमें डाक टिकट भी लगाए जाते थे। तरह तरह के डाक टिकट जो हैं वो जारी किए गए हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर अभी तक। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका संग्रह करते हैं और उनके पास इनका बहुत बड़ा कलेक्शन है और डाकघर विभाग भी खुद भी अपना कलेक्शन रखता है। तो विभिन्न मौक़ों पर विभिन्न जो मशहूर हस्तियां हैं उनके लिए भी डाक टिकट जारी हुए हैं, उनके नाम पर जारी हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी डाक सेवा के बारे में और डाक टिकट संग्रह के बारे में एक छोटी सी जानकारी। और आज है शनिवार, शनिवार को होता है कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुनें। तो पहला जो हमें कॉल आया है, फरमाइश आई है गांव खाराड़ा से, भेजने वाले हैं हरसुख राम दिवासी, संगीता, कल्लू, किशन और भानु। तो इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आज का अर्जुन का ये गाना।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ

0: पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फ़ोन करें गीत सुने की अगली फरमाइश हमें आई है राठौड़ी कुआ नागौर से। भेजने वाले हैं पूजा बडली से डिंपल, और सेंट एंसलम स्कूल के सामने जाट कॉलोनी नागौर से रामनिवास सांगवा, इन्होंने सुनना चाहा है सुल्तान फिल्म का ये गाना।

0: में भी है।
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
2: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
6: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
5: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
6: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
5: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
7: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
8: अगली फरमाइश आई है गांव चंपासर से, भेजने वाले हैं प्रेम कुमार। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मोहरा का ये गाना।

अगली फरमाइश आई है गांव छावंटा कला से। भेजने वाले हैं आरिफा। उन्होंने सुनना चाहा है बरसात मूवी का ये गाना।

यह है अगली पेशकश। फरमाइश आई है शास्त्री नगर नागौर से। भेजने वाले हैं कुंभाराम चावला। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म जवार भाटा का ये गाना।

अगली फरमाइश आई है लोहारपुरा नागौर से, भेजने वाले हैं नियाज पेंटर। उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आशा का ये गाना।

अगली फरमाइश आई है, मानस नागौर से राहुल कुमार नास्तिक, और एक फरमाइश करता और है चांद मोहम्मद अजमेर गेट नागौर से, इन्होंने नचाया है ये गाना फिल्म सोनी महिवाल से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम पणिहारी।

हाथ सू मेहनत कर और मन में विश्वास रख। जी बहना, हाथ सू मेहनत कर और मन में विश्वास रख, हर काम ने पूजा समझ और दिल में उजास रख। मंजिल भले ही दूर होवे, सखिया मंजिल भले ही दूर होवे, थक कर बैठ मत जाए जे, करमरी राह पकड़ बहन, सफलता एक दिन पाई जे। कार्यक्रम सुनवाड़ी सगड़ी प्यारी बहना ने धीरज लाल ने चारों घणो घणो हेत भरो राम राम। जी बहना, और आप रो घणो घणो स्वागत है आपरे मनपसंद कार्यक्रम पणिहारी में। बहना कहवे है कि हाथ के मायने जकी चीज लिखी ओड़ी है बा आपने जरूर मिले है, तो आ ही चीज जकी है कई बार आपने दुख भी दे देवे है, किया बहना? बहना ई वजह सु कई लोग जका है वे मेहनत करनी छोड़ देवे है। अगर कोई व्यक्ति पंडित जी करने जावे और बेने हाथ दिखावे के देखो सा हमारे भाग में काई लिखियोड़ो है, और पंडित जी अगर बेने कह देवे कि देख बेटा तू कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तू तो पैसों वालो नहीं होवेला, तो पछ भी माते काई फर्क पड़ेला, वो तो कर्म करनो ही छोड़ देवेला, मेहनत करनी ही छोड़ देवेला, है कि नहीं? बहना आ चीज अक्सर लोगों के साथे हुए ही है, लेकिन बहना ध्यान रख जो कि हाथ री रेखावां सु भाग नहीं बनिया करे, भाग तो बने है हाथ सु करियोड़ा कर्म सु। जी बहना बात बिल्कुल सही है। देखो बहना, आपा हमेशा कई जगह सपना पाल रखा है ना, कई अपनी इच्छावां भी हुआ करे है। देखो माँ बाप री इच्छा हुए कि बे आप रे टाबरा ने घणो ही पढ़ावे, घणो ही लिखावे, अफसर बनावे, और बिया ही परिवार जको है घणो सुख समृद्धि के मायने रहे, है ना? और कोई लोगों की इच्छा हुए कि बे आपरा सपना जका है वे साकार करे, लेकिन अगर ये सपना पूरा करना है, ये इच्छावां पूरा करना है, तो ये बैठा बैठा हो जासी कहीं, सोचो नहीं हुए ला ना? बात बिल्कुल सही है। केवल सोच बासू या आपा भाग के भरोसे छोड़ देवा तो मंजिल आपने नहीं मिलेला। अब सोचो अगर टाबर यहाँ सोचे है कि मैं तो घनी सारी पूजा करूँ और मैं परीक्षा के मायने तो बस पास हो जाऊँ ला, क्योंकि मैं भगवान ने तो प्रसाद चढ़ायो, इतो यान करो, रात दिन में एक कर दी, शाम का भी आरती करी, सुबह आरती करी, बस अब तो मारे तो की भी नहीं हुएला, मैं तो भगवान के प्रसाद बोली उड़ी है, तो पछे तो मैं तो पक्का ही जका मारा नंबर चोखा आवेला और पास होऊंला। लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करेला तो आप ही सोचो कि वो पास किया होवेला, तो बात सही है ना बहना? बहना जब आपा मेहनत कराला तो ही बिको परिणाम मिलेला। बस भगवान तो आपा ने एक सकारात्मक सोच आपा के मायने भरे है कि तू कर्म कर तो जा, बस कर्म करेला जद ही थने फल जको है वो जरूर मिलेला। तो बहना आपा ने मंजिल पाउण वास्ते, मंजिल तक पुगण वास्ते मेहनत तो करनी ही पड़े, लगन राखनी पड़े और निरंतर प्रयास करनो पड़े है। जी हाँ, देखा हाँ बहना कि खेत के मायने बीज बोया बिना फसल पावणो आसान है कि फसल पा सका आपा? बिल्कुल भी नहीं है ना बहना। इंसान री जकी पहचान है बा बीरी बातों सु नहीं, बा बीके कर्मा सु हुआ करे है। अब देखो आपा कितनी भी घनी मीठी बातें कर ला, पर जब देखा कि इंसान री जिम्मेदारी रो टेम आवे, जिम्मेदारी निभावनी री बीरी बारी आवे, तो अगर वो लारे सरक जावे तो बे बातों रो काई मोल बहना। और जब कोई इंसान बिना दिखावो करया चुपचाप आप रो फर्ज निभातो जा रियो है और आप रा कर्म बड़ी सच्ची लगन सु निभातो जा रियो है, तो बा ही तो बीरी सच्ची पहचान बने है। तो बिना कर्म रो मतलब केवल रुपया कमावनो नहीं है, बल्कि आप री जिम्मेदारी ने समझनो है, ईमानदारी सु बिने निभावनो है, और अपने काम सु दूसरा खातर उपयोगी बनावनो भी है। तो बहना मेहनत जकी है आ जिंदगी के मायने आपने आगे बड़ भारी एक मतलब जरूरी एक सीढ़ी है, तो आपने मेहनत तो करनो ही चाहिए। मेहनत सू ही आपा के मन के मायने एक आत्मविश्वास जो को है वो आया करे है, और जद ही आपने मन के मायने संतोष मिले है, सफलता मिले है, और सफलता मिलबा में देखो बहना समय जरूर लागे पर मिलेला जरूर। देखो बहना अट मन एक बात याद आ रही है कि दो बहना ही मतलब एक बहन तो बहुत ही मन लगार काम करती है, दोनों ने सिलाई बढ़िया आती ही, तो बड़ी बहन जकी ही बा सिलाई जकी है मन लगार करती, और मतलब कि कोई भी महिला भी कहना आती तो पूरी भी के नाप लेर वगैरह और बिना टेम लगार बढ़िया तरीका से कपड़ा सीलर बिना दे देती, और छोटी बहन बा सोचती कि जल्दी से बिना कपड़ा दे दूँ तो
और ज़्यादा कपड़ा जका मकाना आवता रही और ज़्यादा ज़्यादा हमारी मजदूरी हो जावेला। लेकिन धीरे धीरे देखो बहना, बड़ी बहन कने लोग ज़्यादा आने लग गया और छोटी बहन को जो को व्यवसाय हो वो धीरे धीरे बंद होने के कगार माते आए गयो। क्यों बहना? बे जका है कि मेहनत जके है मुंडा बोल रही थी, क्योंकि मेहनत की वजह से भी के काम के मायने भी निखार आ रही हो और एक वजह से भी के पेट भी चौकी बन गई है। तो बहना ध्यान रख जो कि मेहनत को जो को रास्तो है वो थोड़ो लंबो जरूर है, तो समय जरूर लागे। आपा सोचा कि आपा शॉर्टकट अपना लेवा, जल्दी से अमीर हो जावा, है ना, जल्दी से मतलब मंजिल तक पहुँच जावा, तो आ चीज़ नहीं हुआ करे। तो आपा ने मेहनत जरूर करनी चाहिए, मेहनत को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेहनत करा ला तो सफलता जरूर हाथ लागेला। तो बहना आपा आगे कार्यक्रम के मायने और भी घनी सारी बातें करा ला। अब वक्त हो रही हो कि थान एक प्यारो सो गीत सुना दियो जावे, तो सुना बहना वो गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बहना अब आपा एक एड़ी बात करा ला, जका ने सोच करी ही देखो एक काल जो चुको है भर भर आवे। जरा आपरे मन में एक तस्वीर बनाओ और एक माँ री तस्वीर, एक माँ आपरी कोख में नन्नी सी जान ने पाल रही है। मेरे मन में कितना सपना हो रहे है, मेरी बेटी चाह रही है कि मतलब बा सोचे है कि मारी बेटी बड़ी हो सी, आंगन में खेल सी, मीठी मीठी बाता करेला और मारो हाथ बटावेला, मारे बुढ़ापारो सहारो बनेला। सोचो बहना कि बेटी ने केवल ई कारण सु जन्म सु पहला ही खत्म कर दियो जावे कि बा बेटी है और भी मासूम रो बहना काई कसूर। काई बेटी होनो गुना है, मारी कोख में पलन वालो जीव बेटी हो या बेटो, ई कारण कम ज़्यादा हो जाया करेगी। नहीं ना बहना, जीवन तो जीवन है, बेटी ही बीती ही अनमोल है, जीतो बेटो। फर्क तो जीवन में अपने नहीं करनो चाहिए, फर्क तो अपनी सोच के मायने है बहना। बहना बेटी हो या बेटो, बिन समान अवसर मिलनो चाहिए। बेटी होनो कोई बीमारी थोड़ी है, कोई कमी थोड़ी है और ना ही कोई अपराध है। अपराध है तो कन्या भ्रूण ने खत्म करनो। बहना समाज भी में भी देखो महिला है पुरुष है, इनकी संख्या के मायने कन्या भ्रूण हत्या की वजह से असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। और इसके वास्ते देखो सरकार घने कानून भी बना दिया है, लेकिन फिर भी आपा वो देखा कि कानून होने के बावजूद भी हाल भी कोई सुधार नहीं है। वो सुधार जद ही आवेला जद आपानी सोच जकी है आ ज़्यादा आपा बड़ी कराला और बेटियां ने भी बेटा के बराबर माना ला। मैंने कानून जो है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 केवे लागू हो रहा है, लेकिन देखो बहना कानून बनावन सु बदलाव नहीं आवेला। बदलाव तो जद आवेला जद घर परिवार समाज आपरी सोच ने बदलेला। घर के मायने बेटी पैदा होवे तो बीरो आपा अगर स्वागत करा। देखो बहना भेदभाव तो अटे ही दिख जावे कि जिया ही बेटो पैदा हुए तो घर के मायने कितनी ज़्यादा लोग खुशी मनावे हैं, छत माते चढ़ चढ़ थाली बजावे है ना, सब ने बधाई बांटे है। लेकिन बेटी हुए तो पहला ही चिंता की लकीर आ चुकी है, माता पिता के चेहरा माता आ जावे और लोग भी आ आर के और भाई इनके तो बेटी हुई है। तो देखो बहना अपने अपनी सोच चुकी है आ और ज़्यादा ऊंची करनी पड़ेला। घर के मायने बेटी पैदा हो तो बिरु स्वागत करनो चाहिए, जब बेटी पढ़नी चाहे तो बिन अवसर देनो चाहिए है। और जब कोई बेटी ने बेटा सु कम समझे तो प्यार सु अपने बेटी ने समझानो भी चाहिए है ना। तो बेटी केवल एक परिवार की जिम्मेदारी कोनी है, बात तो समाज रो भविष्य भी है। तो कोख में पलती कली ने खिलन रो अधिकार दे बहना, बेटी ने भी जीवन दो, सपना ने भी के आकार दो। छोरो हो या छोरी एक समान भी ने समझो, आ बात मन में धारो, बेटी री किलकारी सु हर आंगन में खुशहाल थे करो बहना। तो बहना कार्यक्रम आपा और आगे बढ़ावा ला, और भी घनी सारी आपा ने हाल पाता करनी है, लेकिन अब वक्त हो रही है थन एक और प्यारो से गीत सुनाई दियो जावे। तो सुना बहना वो गीत।

0: सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
1: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
0: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स।
2: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम?
3: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
2: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
3: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
2: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
4: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशी, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
5: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
6: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
7: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
8: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: बहना, भगवान आपने कई अनमोल चीजा दी है, पण बें के मायने आंखिया रो तो कोई मोल गोनी है ना। आंखिया सुही आपा असुंदर रंगा सुभरोड़ी दुनिया देखा हां, टाबरा ने हंसता मुस्कुराता देखा हां, खेतारी फसला ने देखा हां, सुबेरी पहली किरण ने देखा और सांझ ने देखा। बहना जरा सोचो कि अगर आपा सुबह उठा और उठता ही अगर आपा ने मतलब आंखिया सु साफ साफ नहीं दिखे है और रसोई के मायने

आँखें थक जावे, तो बिना ना तो आप आराम देवा और डॉक्टर की सलाह के बिना ही कोई भी चीज़ जिकी है आँखें के मायने डाल लेवा। सोचा कि आँखें के मायने आराम मिल जावेला और आँखें ठीक हो जावेला, तो आ चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बहना। बहना देखो जिया जिया उम्र बढ़ रही है तो आँखें से जुड़ी जुड़ी भी कोई बीमारी हो सके है, और इसके अलावा देखो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से भी अपनी जकी मतलब धूल मिट्टी की वजह से या धुआं की वजह से लगातार जो है अगर आप फोन भी देख रही हैं है ना, तो इसकी वजह से भी अपनी आँखें जकी है दुखन लाग जावे, आँखें की बीमारी हो सके है। तो आपने समय समय माते डॉक्टर से आँखें की जांच करवानी चाहिए, आँखें ने आराम भी देना चाहिए, जद ही आँखें जो है लंबे समय तक आपने जो है आपने आप पूरी दुनिया दिखा पावेला बहना है ना। तो बहना आपने आँखें की साफ सफाई को भी ध्यान रखना चाहिए, कोई तरह का हाथ जगह है आँखें के मायने नहीं डाल देना चाहिए है, हाथ धोना चाहिए जद ही अगर आपने आँख कर हाथ लगाना है तो हाथ धोड़ा होना चाहिए। इसके अलावा देखो खाना के मायने भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना चाहिए जो अपने आँखें की रोशनी जगी है आ तेज होवे। तो बहना एक कुछ बातें हैं जो कि आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए जब आपने आँखें की देखभाल आप ठीक ढंग से कर पावाला। तो बिना वक्त हो रही है एक और थाने गीतारी दुनिया में लेर चाला और सुनावा वो प्यारो सु गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिन्मय चैनल है। शाम के 6 बजे कहें कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इनाम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर यह कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
2: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
1: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है।

0: जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की यह पहली पेशकश। फिल्म का नाम मासूम। आवाज़ हैं भूपिंदर और सुरेश वाडकर की।

ये गीत अभी आपने सुना हमने लिया था फिल्म प्रेम गीत से आवाज़ जगजीत सिंह की थी, और यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम दिल की राहें, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म दिल की राहें के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अभी संपन्न होता है। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। यह है कार्यक्रम की पहली पेशकश। आवाज़ चंचल काबरा की है।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सरसों के अधिक उत्पादन हेतु सुने ग्राम भारती, प्रत्येक रविवार शाम 7 बजे, प्रायोजक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर।
3: यह है माटी का स्वर कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, आवाज बनारसलाल जौहरी की है।

0: माटी का स्वर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर का चर्चा चैनल है। कुछ पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से लेके जाएंगे और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए मित्र देशों के साथ सामरिक साझेदारी और सहयोग पर जोर दिया। जयपुर में बड़ी चौपड़ से गलता गेट तक बनने वाले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग खुदाई का काम शुरू। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा कारणों से आज शाम तक 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। पुलिस की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया गया। साथ ही पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। वहीं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर दोपहर तक पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द रहीं। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मंत्रालय ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और निर्धारित क्षेत्रों में सभा करने से जुड़े नियमों की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बदलते इस दौर में तकनीक, त्वरित निर्णय, आत्मनिर्भरता और सामरिक साझेदारी आवश्यक है। रक्षा मंत्री आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के अन्य घटनाक्रमों तथा उनके रणनीतिक प्रभाव पर नजर रख रहा है। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है और उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को दुनिया से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर मेट्रो

0: फेज 1C परियोजना के तहत टनल बोरिंग मशीन TBM का शुभारंभ किया। इसके साथ ही बड़ी चौपड़ से गलता गेट तक बनने वाले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग खुदाई का काम शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण काम को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: जयपुर मेट्रो फेज 1C आज शुरू हुआ है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फेज 2 का मेट्रो प्रहलादपुरा से शुरू किया था, वो भी 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 42 मेट्रो स्टेशन के साथ को डिजाइन किया गया। आज ये जो बोरिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, टनल डिगिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। गलता टू बड़ी चौपट 3.5 किलोमीटर का ये लेंथ अगले 5-6 महीने में वर्क कम्प्लीट होगा और फेज 1C के साथ साथ 1D पे भी काफी काम आगे बढ़ रहा है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।
0: मुख्य सचिव ने आज ही जयपुर विकास प्राधिकरण में आयोजित सेवा सेतु शिविर का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा की, साथ ही दीपावली से पहले की जाने वाली तैयारियों की भी राज्य स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दीपावली के मद्देनजर शहरों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई करवाने तथा आवश्यक रखरखाव के कामों को प्राथमिकता से पूरा करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव दिवाली से पहले अग्निशमन प्रणालियों और उपकरणों का भी रखरखाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारतीय रेलवे का बीते एक दशक में अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। इसे परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति के रूप में रेखांकित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: बीते 10-12 सालों में रेलवे के बजट, सुरक्षा, गति और यात्री सुविधाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में रेलवे का बजट 29,055 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों ने मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा का स्वरूप ही बदल दिया है। साथ ही मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14,000 से ज्यादा ROB और RUB बनाए गए हैं। वहीं मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड संख्या में रेलवे के आधुनिक कोच और स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण हुआ है। बीते दशक में रेल दुर्घटनाओं में भी 90% तक कमी आई है। वहीं दोहरीकरण सहित 30,000 से 35,000 किलोमीटर नए ट्रैक जोड़े गए हैं। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से बैठक की। उन्होंने इस चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी बरतने और बेहतर समन्वय के साथ काम करने की बात कही। श्री सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के जरिए करीब 1,55,000 पदों पर निर्वाचन होना है। इसे देखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। श्री सिंह ने निर्वाचन संबंधी कामों के किसी भी तरह में बाधा नहीं हो, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में जनरेटर और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा। इस बीच आज पंचायत राज चुनाव में अभ्यर्थियों को आवेदन भरने और अन्य जानकारी देने के लिए प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला रखी गई। वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाई गई। लोक अदालत के लिए प्रदेश में 8,38,000 से अधिक प्रकरण सूचीबद्ध किए गए। इनमें आपसी सहमति और राजीनामे से मामलों का निस्तारण किया गया। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने किया। वहीं जयपुर में न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने लोक अदालत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इनमें राजीनामे के आधार पर फैसले होते हैं, जिससे लोगों के समय की बचत होती है।

0: को पगार बनाने वाले को मंच है। यहां किसी की किसी सहमति से विवाद शांति को समाप्त होता है। इस लोक अदालत को पूर्णतः सार्थक बनाने के लिए लंबित प्रक्रिया भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। जन सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुनवाई की जा रही है।
1: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न आयोजन रखे गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में हुआ। इसमें एनएचएम मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने चिकित्सा संस्थानों को मरीज केंद्रित सोच के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मानसिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा, साथ ही समय पर बीमारी की पहचान और उचित इलाज भी हो सकेगा। प्रदेश में 10 सितंबर से मानसिक स्वास्थ्य माह की शुरुआत हुई। इसका समापन आज मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान के साथ हुआ। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: मानसिक स्वास्थ्य माह के दौरान प्रदेश में शिक्षण संस्थानों और चिकित्सालयों में विशेष जागरूकता सत्र और कार्यशालाएं रखी गई। इनमें मनोचिकित्सकों द्वारा विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, मोबाइल फोन की लत छोड़ने सहित अन्य विषयों पर सलाह दी गई। रोजाना योग, खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही भ्रांतियों से बचने, लंबे समय तक उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से परामर्श लेने को कहा गया। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हेल्पलाइंस की भी जानकारी दी गई। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेली मानस के जरिए लाखों लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने शारदीय नवरात्र की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने जगत जननी मां भगवती से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। शारदीय नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है। ये पर्व मां दुर्गा की आराधना को समर्पित है। देवी दुर्गा को शक्ति और साहस का प्रतिरूप माना जाता है और नवरात्रि के दौरान उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ कल पहले दिन शैलपुत्री रूप की उपासना की जाएगी। देवी मंदिरों में अगले 9 दिनों तक होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर सजावट सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर बाजारों में रौनक है। पूजन सामग्री, चुनरी, कलश और अन्य सजावटी सामान की खरीदारी की जा रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पांडाल भी बनाए जा रहे हैं, जहां गरबा और डांडिया का आयोजन होगा। इससे पहले आज पितृ अमावस्या पर विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया गया। लोगों ने जरूरतमंदों को दान पुण्य भी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए मित्र देशों के साथ सामरिक साझेदारी और सहयोग पर जोर दिया। जयपुर में बड़ी चौपड़ से गलता गेट तक बनने वाले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग खुदाई का काम शुरू। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख बंशी लाल तैयार है। जिले में संस्थाओं की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समिति पंचायतों में चुनावी हलचल से ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध करने और आचार संहिता की पालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त निगरानी रखी जाए। जिले की 11 पंचायत समितियों की 448 पंचायत

0: समिति के 179 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। जिले के कुल 8,17,626 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अनुसार बालोतरा जिले में तीसरे चरण में 6 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। इनमें सिरधरी, गिड़ा, कल्याणपुर, गुड़ामालानी, धोरी मन्ना और समदड़ी शामिल हैं। इस चरण में 66 केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं चौथे चरण में 5 पंचायत समितियों में होगा। सिवाना की ग्राम पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चौथे चरण में कुल 182 ग्राम पंचायतों के 469 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिला 19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र नव मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे अभियान के तहत 7 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूलों में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए गए। स्थानीय बीएलओ और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब प्रभारियों के सहयोग से पात्र नव मतदाताओं से फॉर्म 6 भरवाकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। जिले में हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराते हुए सभी 7 निकायों में अपने बोर्ड बनाए हैं। बालोतरा नगर परिषद, सिवाना, जसोल, समदड़ी, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना और सिरधरी में भाजपा के बोर्ड बने हैं। बालोतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर हाल ही में अच्छी पहल की गई है। जिले में आमजन को बेहतर और जल्द आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले को 5 नई 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। इन नई एम्बुलेंस को पुरानी एम्बुलेंस के स्थान पर विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर उम्मेदाराम ने बताया कि इन नई एम्बुलेंस से जिले के ग्रामीण, दूरदराज और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर सुरक्षित और बेहतर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला जागरूकता और सुरक्षा संबंधी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में दीपावली पर्व पर अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बालोतरा और सिरधरी क्षेत्र में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस बार केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति होगी। जिले के युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बालूतरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशे को कहीं ना, खेलों को कहीं हां विषय पर जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालूतरा जिले के 20 स्कूलों के 60 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्ति और खेलों के महत्व का संदेश दिया। जिले के गुड़ामालानी में पिछले दिनों बाजरा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। पश्चिम क्षेत्र में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित होने से किसानों को बाजरे की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी मिल रही है। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नई दिल्ली में जंतर मंतर सामे विरोध प्रदर्शन न ध्यान रखता सका हिफाजत रा जरूरी इंतजाम करी चिया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाओं माथे असर पड़ियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धरी नुवी चुनौतियां न ध्यान रखता थका दोस्त देशों सागे सामरिक साझेदारी और सहयोग माथे जोर तीनों। जयपुर माए बड़ी चौपड़ू गलता गेट ताई जमी हेटे बनाया जावन वाला मेट्रो कॉरिडोर सारू खुदाई रो काम शुरू हो। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह पंचायत चुनाव जुड़ी सगली व्यवस्थावां टेम सर पूरी करन रा हुकम दीना। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार।

0: नई दिल्ली रा जंतर मंतर सामी आज सीजेपी का नीम राखी जिया विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम न ध्यान रखता था का पुलिस री ओरों हिफाजत रा खास इंतजामात करी जिया और कानून व्यवस्था बनाई रखन सारू मोटी तादाद माए पुलिस कर्मचारी तैनात करी जिया हिफाजत रा लिहाज आज सिंजा ताई 45 मेट्रो स्टेशन बंद राखी जिया पुलिस कानू राजधानी रा न्यारा न्यारा हल्का माए आवन जावन री व्यवस्था माए बदलाव रे बारा माए राय दी रिची है पुलिस जनताओं गैर जरूरी आवन जावन बचबारी अरज कीनी है ई विच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मथे दोपहर ताई पुगन वाली कई गाड़ियां नी चाली गृह मंत्रालय रे ओरू सगला राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशा ने खत लिखकर विरोध प्रदर्शन रा मकसद दिल्ली जावन वाला लोगा ने रोकन सारू एहतियाती जतन करन बाबत कही चियो है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नुआ जमाना री युद्ध चुनौतियां रो सामो करन सारू मित्र देशा बीच मदद बधावण माथे जोर तीनो है। वे आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन माथे राखी जिया तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कार्यक्रम माए बोल रहा है। वे कहो कि नुआ जमाना रा युद्ध लड़बा माए तकनीक तुरंत फैसला खुदरेपाण उबोभेवण और सामरिक भागीदारी जरूरी है। श्री सिंह कहो कि दुनिया री सुरक्षा व्यवस्था माए फेरिया मोटा बदलाव बीच भारत पड़ोसी देशा और दुनिया भर रा न्यारा न्यारा वाकया अरवाना रणनीतिक असर माथे निजर राख रियो है। वायुसेना स्टेशन माथे राखी चियो हवाई प्रदर्शन देखिया पाछे रक्षा मंत्री कहो कि दुनिया माए व्यवस्था तेजी बदल रही है जदक उभरती वैश्विक व्यवस्था रो रूप अनिश्चित बनियोडो है। श्री सिंह कहो कि खुदरेपाण उबा भारत रो मतलब देश ने दुनिया अलग थलग करनो नी है बल्कि इनमाए खास प्रौद्योगिकी रा डिजाइन विकास निर्माण और रख रखाव सारू देश रो बूतो बधावणो शामिल है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर मेट्रो रा फेज 1C रा तेत टनल बोरिंग मशीन TBM काम री शुरुआत कीनी। इस आगे बड़ी चौपड़ गलता गेट ताई जमी हेठ बनाया जावन वाला मेट्रो कॉरिडोर री सुरंग खुदाई रो काम शुरू हो गयो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का मुख्य सचिव कहो कि ओ काम साल 2027 ताई पूरो करनो तय करी चियो है।
1: जयपुर मेट्रो फेज 1C आज शुरू हुआ है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फेज 2 का मेट्रो प्रहलादपुरा से शुरू किया था। वो भी 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 42 मेट्रो स्टेशन के साथ को डिजाइन किया गया। आज ये जो बोरिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, टनल डिगिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। गलता टू बड़ी चौपड़ 3.5 किलोमीटर का ये लेंथ अगले 5-6 महीने में वर्क कम्प्लीट होगा और फेज 1C के साथ साथ 1D पे भी काफी काम आगे बढ़ रहा है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।
0: मुख्य सचिव आज जयपुर विकास प्राधिकरण में राखी जिया सेवा सेतु शिविर रोई दौरो किन्नो। वह प्रदेश रा सगला नगरीय निकाया रे आवता 100 दिन रे कार्य योजना रो जायजो लिन्नो। मुख्य सचिव दिवाली जुड़ी तैयारियां रे बारा माई राज्य स्तरीय मीटिंग लेर अहलकारा ने साफ सफाई रा अभियान चलावण जनता री आवन जावन रे ठोड़ा रे साफ सफाई करावण और जरूरी रख रखाव रा काम माथे खास ध्यान देवण बाबत कहो। भारतीय रेल री लारला 10 बरस माए काया पलट वेगी। इनने आवन जावन और बुनियादी ढांचा हलका माए ऐतिहासिक क्रांति रा तौर देखियो जा रियो है। पेश है एक रपट।
2: बीते 10-12 सालों में रेलवे के बजट, सुरक्षा, गति और यात्री सुविधाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में रेलवे का बजट 29,055 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों ने मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा का स्वरूप ही बदल दिया है। साथ ही मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14,000 से ज्यादा ROB और RUB बनाए गए हैं। वहीं मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड संख्या में रेलवे के आधुनिक कोच और स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण हुआ है। बीते दशक में रेल दुर्घटनाओं में भी 90% तक कमी आई है। वहीं दोहरीकरण सहित 30,000 से 35,000 किलोमीटर नए ट्रैक जोड़े गए हैं। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है।

0: ताकि शांति सागे स्वतंत्र निपक्ष और साफ चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जा सके। चुनाव आयुक्त चुनाव उन जुड़िया कामा माए किनी भांतरी अड़चन आवणों बचाव सारू हर ग्राम पंचायत माए जनरेटर और बिजली री व्यवस्था तय करन रा हुकम दीना। ए बीच पंचायती राज चुनाव माए अर्जी देवण जुड़ी और दूजी जानकारियां देवण सारू आज प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला राखी जी। ई साल री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाई ची। इनमाय आखर राज्य माय 8,38,000 बत्ता मामला मथ सुनवाई करी ची। लोक अदालता माय रजामंदियों मामला निपटाई चिया। जोधपुर माय राजस्थान हाईकोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल लोक अदालत रो उद्घाटन कीनो। जयपुर माय न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल लोक अदालत रा उद्घाटन जलसा माय कहो के आ अदालता माय राजीनामा फैसला वे वणु पक्षकारां रा टेम री बचत वे है।
1: सामाजिक सौहार्द को पगार बनाने का अनुपम मंच है। यहाँ किसी की हार या जीत नहीं होती बल्कि आपसी सहमति से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होता है। इस लोक अदालत को पूर्णतः सार्थक बनाने के लिए लंबित मामलों के साथ साथ प्री लिटिगेशन प्रकरणों का भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। जन सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुनवाई की जा रही है।
0: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। ई मौके जनता माय मानसिक स्वास्थ्य उन जुड़ी जाग जगावन सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माय 10 सितंबर मानसिक स्वास्थ्य महीनो शुरू करी चियो हो। ओ महीनो आज मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फेंक्यो। मानसिक स्वास्थ्य महीना रे दौरान प्रदेश रा स्कूल कॉलेज और अस्पताल माय खास जागरूकता सत्र और कार्यशाला मा राखी ची। आमाय मनोचिकित्सक विद्यार्थियों ने तनाव प्रबंधन और मोबाइल फोन री लत छोड़बा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा मथ राय दीनी। रोजीना योग खेलकूद और सकारात्मक सोच काम लेवण मथ जोर दियो चियो। ऐसा गई गलत फहमियां ऊ बचवा और लंबा बगत ताई उदासी थकान चिड़चिड़ापन रे सूरत माए जानकारों राय लेवण सारू कही चियो। ध्यान जोग है कि देश रा 36 राज्यों और केंद्र रा राज वाला प्रदेशों में टेली मानस रे जरिए लाखां लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य जुड़िया इलाज राय दी जा रही है। काल नौरता स्वरूप हैला दुर्गा माता री पूजा ने समर्पित ई पर्व रे दौरान वारा नौ रूपा री पूजा करी जावे है। देवी दुर्गा ने ताकत और हिम्मत रो रूप मान्यो जावे है। घट स्थापना सागे काल पहला दिन शैल पुत्री रूप री पूजा करी जावेला। देवी मिंद्रा माए आवता नौ दिन ताई फेवन वाला न्यारा न्यारा धार्मिक आयोजना न ध्यान राखता थका सजावट समेत जरूरी तैयारियां पूरी करी जा रही है। नौरता माए माँ दुर्गा री मूर्त बिठावन सारू पंडाल बनाया जा रहा है और पूजन सामग्री चुनरी कलश और दूजी सामग्री री खरीददारी करी जा रही है। नौरता माए गरबा और डांडिया रा आयोजन ही राख्या जावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जनता ने शारदीय नवरात्र री शुभकामनावां दीनी है। वारा संदेश माए श्री बागड़े जगत जननी माँ भगवती सगला री जिंदगी माए सुख शांति और बरकत री कामना कीनी। इनु पहली आज पितरा री अमावस रे मौके विधि विधान श्राद्ध तर्पण और पिंड दान करी जिया और जरूरतमंद लोगों ने दान दिया जिया। उत्तर भारत री नामी शक्तिपीठ कैला देवी रो शारदीय नवरात्र मेलो ही काल स्वरूप हैला। 20 अक्टूबर तक चलन वाला ई मेला माए मोटी तादाद माए यात्रुओं री आमद रफ्त न ध्यान रखता थका जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा आज मंदिर हलका माए हिफाजत और दूजी व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। बाड़मेर जिला माए वीरात्रा री वांकल माता रा मंदिर माए काल नौरता रो मेलो भरेला। प्रदेश रा बीकानेर और जयपुर संभाग समेत 5 जिला माए आज हल्की बारिश और छांटा छिड़का रा आसार है। इनो चूरू सीकर और आरएसआर रा हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरन री संभावना है। काली एड़ो ही मौसम रेवन रा आसार है। इविचे राज्य माए पारो उतरन लाग्यो है। लाडली रात 11 शहरा माए कम ते कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करी जियो। आबू राज माए रात्रि बगत तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस नापी जियो। बीकानेर संभाग और शेखावाटी हलका माए 13 और 14 अक्टूबर नई कठे कठे जोरदार बायरो बाजे।

0: सग हल्की बरसात वह सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। नई दिल्ली माए जंतर मंतर सामी विरोध प्रदर्शन न ध्यान रखता था का हिफाजत रा जरूरी इंतजाम करी चिया। राष्ट्रीय राजधानी माए रेल और मेट्रो सेवा माथे असर पड़ियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धरी नुवी चुनौतियां न ध्यान रखता था का दोस्त देशों सागे सामरिक साझेदारी और सहयोग माथे जोर तीनों। जयपुर माए बड़ी चौपड़ू गलता गेट ताई जमी हेटे बनाया जावन वाला मेट्रो कॉरिडोर सारू खुदाई रो काम शुरू थियो। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह पंचायत चुनाव जुड़ी सगली व्यवस्थावां टेम सर पूरी करन रा हुकम दीना। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। उसी पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम की बाट उड़ीकता सगला किसान साथिया ने अभिलाषा पारिक की ओरसू घनी घनी राम राम सा, और राजू भाई आपने भी मारी ओरसू घनी घनी राम राम सा।
7: राम राम अभिलाषा बहन, और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला किसान भाई बहना ने राजू वो राम राम सा।
6: तो देखो सर, राम राम के सागे सागे आप बात करा कि अबार को जो यो समय चल रहे छे, यो भी अपनी खेती किसानी में बहुत ही महत्वपूर्ण समय छे।
7: बिल्कुल सर,
6: क्योंकि देखो अब कटे कटे तो फसला की कटाई होबा वाली छे, कटे कटे नई नई फसला की बिजाई होबा वाली छे। तो अपना जो किसान साथी है, यही सब कामा की यदि तैयारी कर ले, यही कामा सुचारू रूप से यदि करता जावे, तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है वो वन मुनाफो देली। जया की देखो सर, जहाँ जटे जटे फसला कटवा को समय छे, बटे बटे सबसे पहली आपा भंडारण की जो व्यवस्था है विनय उचित बना लेवा, और विनय नीका तरीका से करवा की योजना बना लेवा। कि देखो सर, जो भंडारण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है खेती किसानी को, खेती बाड़ी के पाछे, कि जब अपनी फसल पकड़ तैयार हो जाओ छे, तो उनकी सार संभाल और उनको जो भंडारण व्यवस्था है वो अपने किन तरीका की रखनी छे। तो देखो साहब, भंडारण की जब आप बात करा तो सबसे पहली यही चीज देख लेगा, जो भी अपनो भंडार गृह है सफाई का तरी पोछो लगार, चारों मेर की जो खिड़कियां दरवाजा है वाने खोल देवा, 2-3 दिन वाने खुल्लो ही रहवा देवा, ताकि ताजा हवा बाहर निकल सके और माई की जो नमी है वह खत्म हो सके। इके पैसे ध्यान रखा कि आपनी जो भी भंडार करवा के ताने, जो भी बोरिया अपन ने काम में ले रहा छा, वह बोरिया की साफ सफाई को भी अपन ने विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करा कि नई बोरिया काम में लेवा, यदि नई बोरिया काम में न ले रहा हो तो पुरानी बोरिया ने भी निकतरी कीटनाशक का घोल में डुबो और निकतरी धूप में सुखार, क्योंकि देखो अब तो धूप भी राजू भाई बहुत बढ़िया पड़ रही है।
7: और देखो क्या धूप में सुखार, तो धूप में अपन बोरिया ने नहीं, बल्कि अपना जो फसल का जो उत्पादन है, बिन भी अपन देखो धूप में सुकार नमी कम मात्रा में करके, फिर बिके बाद ही अपन, या तो अगर बेचनो है तो आप बाजार में भी ले जावा, साफ सुथरो करके बढ़िया तरह से बिन ग्रेडिंग कर सका आप, तो अपन बढ़िया भी को भाव मिल जाओ, या आप स्टोर करा तो बिन नमी कम सु कम कर, उचित जो मात्रा है नमी की भी तक लिया, और बिन आप भंडारित करा तो अपनी जो फसल उत्पादन है वो खराब हो बस बच जा सी, और आपन नुकसान नहीं हो सी। और देखो इसके साथ ही आप देखो बाहर को जो टेम है आगे चुना गेहूं है, बाकी भी कृषि, तो अबार देखो सरसों को बिजाई को टाइम चल रहा है, तो आपने देखो फसल है नमी संरक्षित कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, अगर पानी की कमी है तो जी कमाए नमी है, तो अगर आप भी कमाए पलेव भी कर रहे हैं, खाद की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो बीज भी अपन सोच समझ रही लेना, आपने जो मिट्टी है पानी है देखा मेलजोल का हिसाब, मिट्टी पानी की जांच की सिफारिश के अनुसार ही अपन खाद प्रयोग में लेना है, और बीज भी के अनुसार ही प्रयोग में लेना है, साथ ही साथ जो अपना वेरायटी है जो किस्म ले से बीज की बिको अपन चयन सोच समझ करना चाहिए, ताकि अपना जो को जलवायु है मौसम है बी के अनुसार और सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार आप बीज लेवा, और बीज को प्रमाणित अपन बिल है जो भी लेवा, ताकि अपन एक सोह वाला जो जोखिम है विश्व आप बच सका।
6: जी सर, तो देखो सर, या तो बात हुई एक जानकारी की, और अब कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी और है राजू भाई।
7: बिल्कुल सर,
6: तो कार्यक्रम में ले चला हूँ जानकारी की ओर।
7: और कहीं
6: तो देखो सर, अपने साथ अपना विशेषज्ञ है
7: डॉक्टर अशोक शर्मा जी, प्रोफेसर कीट विज्ञान, कीटनाशी रसायन का अवशेष और बांका दुष्परिणाम के बारे में अपन जानकारी देसी, तो मिलर लेवा जानकारी।
6: बिल्कुल सर,
8: आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर, एवं पूर्व निर्देशक शिक्षा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से पधारे हैं। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
9: नमस्कार।
8: आज डॉक्टर अशोक शर्मा जी कीटनाशी रसायनों के अवशेष और उसके दुष्परिणामों के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि कीटनाशी रसायनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके अधिक उपयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये किसान भाइयों को जानकारी दें।
9: देखिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज के समय में कीटनाशियों का उपयोग बहुत आवश्यक हो गया है, पर इसके साथ साथ अगर इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए तो उससे भूमि, हमारी जमीन, हमारा पानी, जल, वायु और हमारे आहार या खाने में इसका प्रदूषण बढ़ सकता है। इसके साथ साथ एक और परेशानी हो सकती है कि हमारा जो प्रकृति में जैविक संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है।
8: जी जी जी।
9: अब अगर हम 2005 वर्ष की बात करें तो उस समय करीब 90,000 टन कीटनाशकों का उपयोग हुआ करता था
8: जी।
9: जो अब 3,00,000 टन से भी ज्यादा हो गया है, और इसकी अगर कीमत की बात देखी जाए तो ये अब करीब 9,950 करोड़ रुपए मूल्य के कीटनाशी जो हैं वो बाजार में इस समय खरीदे और बेचे जा रहे हैं। द्वारा जो खरीद हो रही है उसका मूल्य जो है वो करीब 9,000 करोड़ या 9,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है।
8: इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कीटनाशी रसायनों का उपयोग लगातार आज बढ़ता जा रहा है और इनके अंधाधुंध प्रयोग से आज हमारा संतुलित जो फसल उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी के साथ आप ये भी बताएं कि कीटनाशियों के छिड़काव और बुरकाव के बाद क्या फसलों पर इनके अवशेष रह जाते हैं?
9: देखिए, जब भी हम कीटनाशियों का उपयोग करेंगे फसलों पर, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो फल की हो या और अन्य फसलें हो, तो उनमें उनके अवशेष या उनका कुछ मात्रा जो है उस पर रह जाना एक स्वाभाविक, एक आम बात है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अवशेष जो बचेंगे फसलों के ऊपर वो एक इतनी सीमा में होने चाहिए कि जिससे खाने वाले के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, किसी तरह का कोई उसके खाने वाले को उसका नुकसान ना हो।
8: जी जी।
9: तो इसके लिए जो है एक सीमा निर्धारित की हुई है, वैज्ञानिक तौर पर एक सीमा निर्धारित की है जिसे कि हम कहते हैं सहनशीलता सीमा या निरापद सीमा।
8: जी जी।
9: और जिसको हम बड़े साधारण अगर भाषा में हम देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो विषैले पदार्थ हैं, क्योंकि सारे जितने रासायनिक कीटनाशी हैं वो विषैले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, तो उनकी वह ज्यादा से ज्यादा क्या मात्रा रहे जो कि खाद्य सामग्री में एक निश्चित समय के बाद जो है वो हम रहने की उसको परमिशन दे सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं कि इतने समय के बाद जो है ये खाने वाले पर किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव नहीं डालेगी।
8: जी सर, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कीटनाशकों के प्रयोग के बाद जो फसल पर इसके अवशेष रह जाते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इनकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि क्या जमीन या मृदा या उस पर उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उन पर भी इन कीटनाशियों का अवशेष रह जाते हैं?
9: हाँ जी, देखिए, ऐसा जब भी हम कीटनाशी छिड़केंगे तो वो उसका कुछ भाग जो है वो जमीन पर भी गिरेगा।
8: जी जी।
9: जब भी छिड़काव होगा कुछ पत्तियों पे गिरेगा, तो ये स्वाभाविक है कि उसके कुछ अवशेष जो हैं वो दोनों जगह रहेंगे और खास तौर से जमीन में जो है वो 1 से 1.5 वर्ष तक रह सकते हैं, और इसीलिए जो है 1 से 1.5 या 2 वर्ष तक भी रह सकते हैं। इसलिए क्या किया कि जो BHC हम किया करते थे, छिड़काव करते थे बहुत पहले, उसको जो है फिर सरकार ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसके करने से क्या है, उसके छिड़काव और उसके जमीन में देने से ये नुकसान होने लगा था कि जो अंदर जो हमारे 6 जो कीट थे, अच्छी अच्छी जो बीमारी वाले जीवाणु थे, वो उनको नुकसान होने लगा था। इसलिए क्या किया कि फिर सरकार ने इसका जो है वो इसका उपयोग जो है धीरे धीरे कम करके अब तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। अब अगर हम ऐसी भूमि में अगर लेते तो जो अगर हम आलू की बात करें, शकरकंदी की बात करें, शलजम है, ये सारी जमीन के अंदर ही की वो रहती है, तो उसमें जो है इसके अवशेष पहुंच जाएंगे जो हमें पूरी तरह से पता भी नहीं लगेगा कि कितना वो जा चुका है, और वो जो है हम खाने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फिर क्या है कि भारत सरकार ने ऐसे कीटनाशी जिनके अवशेष बहुत लंबे समय तक रहते थे उनको रोक दिया कि भाई इनका तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और रोकने का कारण जो था वो ये था कि जो है किसी भी तरह से जो है हमारे खाने वाले को नुकसान ना पहुंचे। साथ में क्या था कि जो जमीन में जो कीट पाए जाते हैं, कई बड़े वैसे भी हैं जो उसके लिए उपयोगी होते हैं, वो जो है वो मर सकते हैं, इसलिए जो है इसको जो है रोकना पड़ा था।
8: जी सर, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि फसलों पर छिड़के गए जो कीटनाशक रसायन है उनका कुछ अंश फल सब्जियों और अनाज में भी रह जाता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब आप हमें ये भी बताएं कि कीटनाशकों के छिड़काव के बाद फसलों की कटाई या तुड़ाई कब की जाए ताकि इनके अवशेष मानव शरीर में कम से कम पहुंच पाए और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव कम से कम पड़े।
9: देखिए, जो विश्वविद्यालयों में या सरकारी जो विभाग हैं, कृषि विभाग, उनमें जो अनुसंधान हुए हैं वो हमें ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि जो है कब जो है वो फसल को तोड़ना है, चाहे वो सब्जी की हो चाहे वो जो है आपके फल की हो, ताकि जो जब वो काम में ली जाए तो उसमें जो है उसके अवशेष कम से कम हो और मानव शरीर को कम से कम नुकसान हो। तो उसके लिए जो है एक प्रतीक्षा काल। अब प्रतीक्षा का मतलब है कि कुछ देर हमें रुकना है। अब जब हमने छिड़काव कर दिया या जमीन में हमने किसी को मिलाया है या दिया है जमीन के अंदर, तो उसके बाद जो है हमें कितना समय जो है उस फसल को तोड़ना नहीं है, उसका पीछे कारण ये है कि जितनी एक समय सीमा निर्धारित कर दी है वो जो कि अलग अलग फसलों के लिए और अलग अलग कीटनाशकों के लिए अलग अलग है, तो वो प्रतीक्षा काल है कि इतने समय बाद अगर आप तोड़ेंगे तो मानव शरीर पर जो है उसके खाने वाले पर जो है उसका प्रभाव काफी कम हो चुका होगा। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर हमने जो है भिंडी की फसल ली है या टमाटर की फसल ली हुई है और उसमें अगर हमने थायोमिसिन का जो है वो छिड़काव किया हुआ है तो तुड़ाई जो है वो एक दिन के बाद करनी है। इसी तरह से जो है अगर हमने बैंगन का है तुरई है या गोभी की है और यही कीटनाशी अगर हमने छिड़काव किया हुआ है तो उसका हमें समय सीमा जो है 7 दिन रोकनी है फसल को, 7 दिन के बाद तुड़ाई करनी है। अब अगर हमने तोरई की या गोभी की ली है फसल और भिंडी की भी ली हुई है या जो है प्याज की ली हुई है तो हमें 4 से 6 दिन का उसमें अंतराल रखना पड़ेगा।
8: जी जी।
9: अगर हम खीरा, आजकल बहुत जो है बाजार में बहुत अच्छे खीरा जो है वो आ रहे हैं और खीरे में जो है वो अगर इमिडाक्लोरोपिड नामक रसायन अगर छिड़का हुआ है तो उसका जो है हमें 3 दिन के बाद हमने उसका वो लेना है, तो उसके बाद छिड़काव के बाद, और वो भी खास तौर से जो दूसरा छिड़काव उसके 3 दिन के बाद हमने फसल को मार्केट में लाना है या अपने खाने के उपयोग में लेनी है। इसी तरह से फूल गोभी है, उसमें भी अगर इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव किया तो वो उसके लिए भी हमें 3 दिन रुकना पड़ेगा तोड़ाई के लिए। और टमाटर में अगर एसीफेट का अगर हमने कीटनाशक रसायन का वो किया हुआ है तो हमें उसके लिए भी 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। परंतु टमाटर में अगर इमिडाक्लोरोपिड दिया हुआ है

0: तो हमें दो दिन का इंतजार करके फसल तोड़ेंगे तो हमारे उस पर जो है खाने वाले पर उसका बहुत ही कम प्रभाव।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और आपने बताया कि कीटनाशियों के छिड़काव के बाद फसलों की कटाई और तुराई कब की जाए, उसका प्रतीक्षा काल कितना होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज का जो विषय है ये हमें लग रहा है कि ये किसान भाइयों का ही विषय नहीं है, क्योंकि इस पर मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताओ कि ये जो कीटनाशी है इनके जहर से मानव शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जिससे हम जान सके कि ये कीटनाशियों का जहर है।
0: देखिए, कीटनाशकों के जहर के बड़े चौंकाने वाले परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें और जहां पर कि अध्ययन किया गया है या सर्वेक्षण किया गया है, तो इससे क्या होता है कि जो ये जो जहर है इनसे जो है जीभ मिचलाना हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, थकान हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा में जो है खुजली हो सकती है। ऐसी शिकायतें जो है आम तौर से किसानों ने की हैं। और कभी कभी जो है इससे हृदय रोग या श्वास रोग जैसी जो है या कैंसर जैसी या त्वचा के और जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। इसलिए जो है इसका उपयोग जो है बड़े अच्छे तरीके से जो सुझाए गए तरीके हैं उनके हिसाब से उसी मात्रा में ही करना है जो कि वैज्ञानिकों ने निर्धारित की हुई है। अंधाधुंध ओहड़ नहीं करनी है। हमारा पड़ोसी किसान क्या कर रहा है उसको देख करके हम बेवजह ही जो है अब कीटनाशकों का रसायन शुरू कर दें, अन्यथा जो है ये दिक्कतें जो अभी हमने देखी हैं ये दिखाई पड़ सकती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कीटनाशियों के जहर से मानव शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ हमें ये भी बताएं कि ये जो अवशेष और दुष्परिणाम हो रहे हैं हमारे मानव स्वास्थ्य पर, उससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें ताकि मानव स्वास्थ्य पर असर इसका कम से कम हो।
0: देखिए, सबसे पहले जो खास बात है वो ये कीटनाशियों का अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग जो है वो कम ना हो। दूसरी बात यह है कि जो अनुमोदित कीटनाशी हैं उन्हीं का ही उपयोग किया जाए, यानी जो कि जो विभाग ने या कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ से जो सिफारिशें जिन कीटनाशियों की है उन्हीं का उपयोग होना चाहिए। और अंतिम जो छिड़काव होता है, क्योंकि कई फसलों में दो या तीन छिड़कावों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय जो है उनकी एक निश्चित प्रतीक्षा काल जो सीमा है वो कोई कितने दिन तक हमें उसको रोक करके रखना है उसका कठोरता से पालन होना चाहिए, खासतौर से सब्जियों के मामले में, क्योंकि सब्जियां जो है वो जल्दी बाजार में आ जाती हैं, किसान जो है वो जल्दी ला करके अपना पैसा कमाना चाहता है, तो इसलिए उसका जो प्रतीक्षा काल है उसका खास तौर से कड़ाई से पालन होना चाहिए। और जब सब्जियां अगर घर में आ जा हम खरीद के ले आए हैं घर में काम लेने के लिए, तो उन्हें जो है स्वच्छ पानी से अच्छे पानी से धो लें या गुनगुने पानी से अच्छे से दो तीन बार जो है इसको धो लें ताकि अगर कोई अवशेष उस पर छूट गए हों तो वो जो साफ हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हो कि घर में अगर अपन सब्जियां लाते हैं तो उनको धो करके ही काम में लेना चाहिए ताकि उनसे जो कीटनाशी रसायन है वो निकल जाए,
0: जो कुछ बचा खुचा भी हो।
1: जी जी।
0: और जो अगर खास तौर से जो सलाद में उपयोग आने वाले हैं जैसे खीरे की बात हम कर रहे थे, तो इनमें जो है ये होना चाहिए कि जो सुरक्षित कीटनाशी हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसी कीटनाशी आजकल बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और जिनकी सिफारिश भी की गई है। और अब ये जो है क्योंकि कीटनाशियों से हमने देखा है कि पर्यावरण पर नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जो है हम और भी दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, इनसे अगर हम बचें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ मित्र कीट भी निकाले गए हैं, कुछ ऐसे जीवाणु भी निकाल लिए हैं जिनसे कि कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है और कीटनाशक रसायनों का उपयोग जो है वो कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि समन्वित कीट प्रबंधन जो है उस वो विधि अपनाकर भी जो है हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। वैसे इन सब कार्यों के लिए जो है कृषि विश्वविद्यालय जो हैं प्रदेश के सभी प्रदेशों के, विशेष तौर से राजस्थान प्रदेश के जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वो इन कीटनाशकों के अवशेषों के बारे में काफी चिंतित हैं और इनके बारे में जो है आगे और अनुसंधान चल रहे हैं जिनके कि हमारे किसान भाइयों को आगे निकट भविष्य में बहुत अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपने बताया कि कीटनाशक रसायनों के अवशेष क्या हैं, इसके बहुत सारे कारण बताएं, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके बचाव के लिए किसान और उपभोक्ता कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज की

0: वार्ता किसानों को सुरक्षित और जिम्मेदार कीटनाशक उपयोगों के लिए प्रेरित करेगी और हमारे आम नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक बताएगी। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब कहना चाहूंगी कि ये जो समाज हो रहे हैं क्या करना चाहिए?
1: उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है, और जब फसलों के अगर कोई कीटों की अगर हमें वो दिखाई पड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम दूसरे साधन को ना अपना करके कीटनाशकों के उपयोग पर आते हैं।
0: जी जी।
1: पर इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि जो जिन भी फसलों पर, चाहे वो सब्जी की हो, खासतौर से विशेष तौर से सब्जी की मैं बात करूंगा क्योंकि वो मार्केट में जो है बाजार में जल्दी आ जाती है, तो उसके लिए जो है जो अनुमोदित जो सिफारिश किए हुए जो हमारे कीट रसायन हैं उन्हीं का उपयोग करें, और वो भी जब करें जबकि बहुत आवश्यक हो। पहले हो सकता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और नहीं तो फिर कीटनाशकों पे आना है तो जिस सिफारिश की गई है उन्हीं कीटनाशकों उन्हीं मात्राओं में और उतने समय काल को रोका जाए, उसके बाद तुड़ाई की जाए ताकि जो है उसके अवशेष जो है उसकी मात्रा जो है खाने में या सब्जी में या खाने वाले पदार्थों में कम से कम आए। और साथ में जो है अब अगर हमने उसको खरीद लिया है, हमें ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कम से कम घर में आने के बाद उसे जो है साफ पानी से या थोड़े गुनगुने पानी से जरूर सब्जियों को और फलों को धो करके ही बनाए या फल को काट करके खाने में काम मिले।
0: तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो अपन जो भी सब्जियां उपयोग में ले रहे हैं वो कैंसर का भी कारण है?
1: हाँ, कैंसर का कारण हो ऐसा अनुसंधान बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से अगर इसी मात्रा में अंधाधुंध उसका उपयोग होता रहा तो जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियां जो है वो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगी।
0: तो डॉक्टर साहब आपने ये जानकारी दी, आपने हमें बहुत चीजों के बारे में बताया, आपने बताया कि कीटनाशक जो रसायन का प्रयोग आजकल हो रहा है, क्योंकि जरूरी है कि हम इनका उपयोग करेंगे क्योंकि कीटों और रोगों से बचाने के लिए हमें इनका उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन उचित और संतुलित उपयोग फसल उत्पादन में सहायक होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक और गलत तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो अवशेष हैं वो हमारी फलों, हमारी सब्जियों, अनाज और खाद्य पदार्थों में नुकसान हो सकता है और इससे हमारे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए आज एक चिंता का विषय है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों, गृहणियों और सभी श्रोताओं के लिए आपकी जो जानकारी है वो ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो राजू भाई देखो, जानकारी तो आप ले लिया।
6: बिल्कुल सर।
5: और देखो जानकारी खातिर आप अपने विशेषज्ञ ने भी दिया धन्यवाद, और धन्यवाद के सागे सागे अब कार्यक्रम ने ले जाना मनोरंजन की ओर। तो सुन ले भाई बढ़िया सुगीत।
6: बिल्कुल सर।

0: हाँ तो राजू भाई, गीत के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी ने देवा अठे ही विराम, किसान भैया से लेगा आज्ञा चाला करा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
2: प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश। फिल्म का नाम घरवाली बाहर वाली। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अनुराधा श्रीराम की।

ये गीत हमने लिया है फिल्म मैं तेरा हीरो से। अरिजीत सिंह, शेमाली खोलगड़े की आवाजें हैं।

ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, फिल्म का नाम बंगिस्तान। आदित्य सिंह शर्मा, बेनी दयाल, नीरज की आवाज़ें।

ये गीत अभी आपने सुना, हमने लिया था फिल्म बादशाहों से। आवाज़ें थी जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की, और यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम अजनबी, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

AR रहमान के गाए फिल्म हाईवे के गीत का साथ ही फिल्म संगीत अभी संपन्न होता है। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। डीजे सुनिए, फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। हेलो फरमाइश।

0: चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। दोस्तों, यह है सुरीला और सजीला सफर हेलो फरमाइश का आपके दोस्त अहमद अली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और लेते हैं प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: मुकेश मैं बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, बोल रहे जी, बोलिए।
1: अरे फिल्म तो कैसे बात जान रही है, वो गाना ना सिंधी एक से पर ऐसा ना या कल क्या वो किस जाना ऐसे का बोल है, फिल्म का नाम जानी।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंदाज का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मेरा नाम है रोशनी रावत और मैं नागौर से ही बोल रही हूँ।
0: जी, वैसे आप करते क्या हैं?
1: सर मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी
1: सर मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ
0: जी जी आपका बहुत शुक्रिया। आप पसंद करते हैं तो आज आपने
1: जी
0: फ़ोन किया है, तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सर, मुझे कोई भी गीत सुना दीजिए आप अपनी पसंद का।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।
1: डेडिकेट
0: वेलकम।
1: करना चाहती हूँ।
0: जी
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे बड़े भैया है महेंद्र देवन जी,
0: जी
1: उनको भी डेडिकेट रहेगा सर।
0: ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। पेश है
1: ओके
0: आपके
1: सर,
0: लिए
1: धन्यवाद।
0: आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर न्याज पेंटर बोल रहा हूँ लोहारपुरा से।
0: अच्छा, तो आज आपने फोन किया है। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सर फिल्म का नाम है अंधा कानून।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: इसका सर ये टाइटल सॉन्ग अंधा कानून का।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव की हवेली नाम मालनाथ।
0: बालनाथ जी बोल रहे हैं।
1: हाँ
0: हाँ जी, क्या हालचाल है आपके?
1: ऐसा ठीक है, खेतिया काम करता है।
0: जी,
1: गांव सुनना मेरे को, वो
0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं काला पत्थर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमान सर।
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं दिलीप रानकर बोल रहा हूँ, 5/2020।
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं टीचर हूँ सर,
0: टीचर हैं तो गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट हैं?
1: गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। सर
0: अच्छा, तो आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: धूप तेज है, सुबह सुबह सर्दी रहती है। हाँ मौसम में बदलाव है सर।
0: हाँ, तो आज आपने फोन किया है, तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सर मैं शाहरुख खान की एक फिल्म है अंजाम नाम की, उसमें बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, वो गाना सुनना चाहूंगा।
0: ठीक है, तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म अंजाम का ये गाना।

तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए आप हमें फ़ोन करें प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। तो दीजिए अगले कार्यक्रम तक अपने दोस्त अहमद अली को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम चिरमे। और यह है कार्यक्रम की पहली पेशकश, आवाज माल्या दास की है।

लोक गीतों का कार्यक्रम चिरमी अभी आप सुन रहे थे। आखिरी प्रस्तुति आवाज़ सीमा मिश्रा की थी। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि की 8:45

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमरीका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
4: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
3: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
5: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
6: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे।

0: खाते में तुरंत आ जाती है, और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूं, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उप निदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
3: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
2: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे है। निजी सुनिए दर्द भरे गीत और यह है पहली पेशकश फिल्म का नाम पत्थर के सनम। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

यह है दर्द भरे गीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम पेइंग गेस्ट, आवाज लता मंगेशकर की है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और एस डी बर्मन का संगीत है।

अभी आपने गीत सुना, हमने लिया था फिल्म राज से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, और यह है फिल्म संगीत दर्द भरे गीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम दिले नादा, आवाज़ तलत महमूद की है।

मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के इसी गीत के साथ ही दर्द भरे गीत प्रोग्राम अभी संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:25 हुए हैं। ये सुनिए विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार, और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका, और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशिबाला, सीनियर इंडोलॉजिस्ट, डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से, तारीखों से, इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय, उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है? डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, क्या है संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है। तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, इवोल्यूशन होता है। तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है, और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है। चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं है, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नजरिया अभी पिछले कुछ समय में एकदम बदला है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
1: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के।
2: जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है, तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं, समाज ही इसका प्रतिकार करता है। इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हो, हमारे मेलों की हो, व्रत की हो, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, और इसके पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई। तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है।
1: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल OTT के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता से जुड़ी सामने आ रही हैं। आप अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगे इस बारे में?
3: OTT के माध्यम से बहुत कुछ सामने आ रहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी आ पा रहा। भारत में एक नई चेतना आई, उसके कई कारण है, जैसे कि जोशी जी ने कहा कि एक नवोन्मेष है, परंतु ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हम कहते हैं प्रति क्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान उसकी संस्कृति है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है। जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि

0: आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं को और ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं ये देख रही हूँ कि जब हमारे देश के लोग बाहर अब अधिक जाने लगे, पहले भी जाते थे परंतु अब अधिक जाने लगे, वे देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है। लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, अरे इंडोनेशिया में रामायण है
1: जी।
0: अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जब उन्हें पता चलती हैं तो उनको एक स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि आपकी भाषा में भी है हमारी भाषा में भी है, तो लोगों में एक चेतना आई। जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है, वही अच्छा है। परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जो भारत का सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है। फिर उनको पता चलता है कि अच्छा, ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा क्योंकि मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे। उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास, पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात करेंगे, इन दोनों उत्तरों में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई, लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे, शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी इसे देंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपका क्या कहना है?
2: देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस देश की सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशिबाला जी भी बता रही थी, कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका, लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया। उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में, यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। इस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया। फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक है, ये सारी चीजें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया। वहां से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है, जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई। ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।

0: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की पहचान होती है उसकी भाषा और उसकी कहानियां, और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई है, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय हैं जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
1: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है,
0: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने का।
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा। हम ये भूल गए, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मानपुर का विद्रोह है उसको कोई जानता ही नहीं था, उसमें 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आई तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा, एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युग युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
0: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये इकोलॉजी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है?
2: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे। और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप त्याग जो भारत की संस्कृति का भाग है वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उनको और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है। हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है। मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है, इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली। कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर।

0: किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था, वो मूर्तिकार
1: जी,
0: जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी। तो मंदिर है, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फी या कुछ करके कुछ टाइटल था। हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है, पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा, उसको हम नहीं बता पा रहे हैं।
1: शायद वो कहीं खो के रह गए हैं।
0: खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहाँ दुनिया देखे। जैसे मेरे एक रूसी सहेली से बात कर रही थी एकादशी के विषय में, बता रही थी, शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी, तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई बताने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है वो करना चाहिए।
1: यहाँ मुझे अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है, कहा जाता है एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक, नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे, लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है। आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगी।
2: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000 कहीं 50,000 इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे। और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी। तो ये हमारी जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये वैभव रहा है। लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर ही दिखाएंगे क्या आधुनिक भारत में, या सिर्फ हम बख्तियार खिलजी को ही कोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते हैं, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहां पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहां पर हो, नई नई चर्चाएं वहां हो। इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है, एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु, ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहां सुविधाएं कि वहां कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, उस पूरे परिसर की उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके, इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है। और वहां पे फिर नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहां हो रही। और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे। आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने एम्स खुल गए हैं, इसके साथ ही आईसर, सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च, इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिए IIIT कितने सारे खुल गए हैं ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो, आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो। कौन था, आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा, अपने चिप का निर्माण करेगा। कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा? आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है। सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है। डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है, हम आप सब देखते हैं। तो आज भारत ने ये सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, चिप बनाएंगे, तो डेटा हमारा होगा, डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा, तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो ये जो एक शिक्षा का एक, ये जो एक नवाचार है, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं, विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है, राष्ट्रीय

0: शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमेशन कराती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है, दोनों को साथ लेके चलती है। वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है, वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है। तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहां पर हम एक संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं। इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में, जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था। पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, एक क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है, उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए।
0: नहीं, वैसा ही नहीं है। देखिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया। पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है, तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले। आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है, आप संगीत भी सीख रहे हैं, आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं, आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु हैं, ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं, वो खुली रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा है, और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हों, ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके, नवाचार की बात करके, उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है, और वो ये है, रण उत्सव जैसे उत्सव जो हैं, वो जीवंत संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं, या फिर केवल समझने की कोशिश करूं, क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: भारत में ये देखा जाता है, हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल हूँ, परंतु हम सब भारतीय हैं, ये विलक्षण बात है। उसके पीछे बहुत सारा आधार है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत ज्ञान, संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम उनके माध्यम से एक है। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है
1: जी।
2: तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था, और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका ज्ञान है, जिसके आधार पर भारत भारत है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ नहीं। फिर आज हम केवल नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी, विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलट कर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था, जो वैज्ञानिक दिए, वो किसने दिए? वो आश्रमों और गुरुकुलों ने दिए। जब अंग्रेज आए, ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था, आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया। आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं, परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज, जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है, और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गईं या समाप्त कर दी गईं, कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल या आश्रम में भेजना है तो हम सोचने में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
0: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
1: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी। पहले हम कहा करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
0: हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों की युग्म बनाए। अगर आप गुजरात

0: है तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु। यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेलजोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिलें, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसा तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया और उसमें इतनी अपार सफलता मिली। बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली। अभी एक और नवाचार हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो लोक भवन है जहां पर माननीय राज्यपाल रहते हैं, अब वो राज्यपाल उस राज्य के जो राज्य दिवस होते हैं उनको अपने लोक भवन में मनाते हैं। ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि केरल के माननीय राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश दिवस है, तो केरल के राज्यपाल अपने लोक भवन में मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे और उस दिन मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश की परंपराएं, मध्य प्रदेश का गीत, ये सब होगा। यानी केरल के लोगों को मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानने समझने का अवसर मिलेगा या पंजाब के। तो इस तरह से ये अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का भी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं। यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
1: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है
2: जी। और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं?
0: देखिए, पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात्य वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी। और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा, इनको तो मिलना ही था क्योंकि ये एक उस अभिजात्य वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है, और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई है जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही है कृषि के लिए, ताकि हमारी जो मौलिक फसल है वो आगे जिंदा रहे। या कोई व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, मतलब किसी को पेंशन मिली है वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। या कोई हैं जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि

0: आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है, एक अलग तरह का सम्मान है। और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक नजरिया हो गया।
1: जी डॉक्टर शशि, आप क्या कहेंगी
2: जी? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे, अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी एड कर दिया गया है, जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है, परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन बना है। तो इससे क्या है कि अनेक प्रकार के लोग जो अनजाने हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके कार्य को कोई नहीं जानता, वो उनके नाम उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है। वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता, उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा, मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया, अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है, तो वो और बढ़कर करता है। दूसरा, आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में। संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा, हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं, अगली पीढ़ी तैयार है। यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे, बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा।
0: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी, उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
1: जी।
0: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके, तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगे।
2: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा।
1: शायद हमारा एक गोल, हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा, और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप में हम जिनका जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।